0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
0: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी।

0: बेडी घुराए पूरी करे डींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252586।
1: जी हा, 3135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की जोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: Israel, but the inspectors in Iran. Israel kills, but Iran is subject to sanctions. This is a true tragedy, which would make anyone hearing it laugh at best. They kill, we are sanctioned, we are punished. Those who are ill, innocent people, Iran.
1: अमेरिका ऐं इसराइल आलमी कानून जी भञकड़ी कंदे ॾींहुं राति ईरान ते हमला कया। तालीमी इदारनि, अस्पतालनि ऐं घरनि खे निशानो बणाए औरतुनि ऐं ॿारनि खे शहीद कयो। हमलनि ऐं शहरनि जी शहादत बावजूद कंहिं बि सूरत में ज़ुल्म अॻियां कंध न झुकाईंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान जो घरियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली इजलास में ख़िताब। ईरानी सदर ख़िताब कंदे शुरू करण खां अॻु शहीद आयतुल्ला ख़ामेनेई ऐं स्कूल जे शहीद ॿारनि जूं तस्वीरूं ॾेखारियूं। मसूद पज़ीशान

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल

0: 8 6 3 1 6 3.
1: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार
1: हलाइण हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जो सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-244-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड

0: हिकड़ी स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200।
0: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

में 10 हंधनि ते फिज़ाई हमला। सुल समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो। 23 सेप्टेम्बर ते अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन्स हमलनि जी कोशिश थी हुई। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन्स तबाह कया हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे मुंह टोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधनि ते निशानो बणायो। हमलो बणायल हंधनि में ड्रोन जा ज़खीरो कयल था कयल लार्चेस खे तबाह कयो वियो। लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स रस्ते सां बंदि आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूद आहिनि, पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं। इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चे सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं थियूं। परॾेही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास इराक़चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सिफारतकारीअ ते ज़ोर भरियो।

0: ऐं गुपचाणी भरिसां ट्रॉलर ऐं कार में टकर लॻण सबबि पीउ पुट फोत अलियाबाद स्टाप वटि हादसे जे नतीजे में कार सवार गुलाम हैदर मंगसी ऐं मुनवर मंगसी फोत थिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: This program is brought to you by
7: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
12: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
13: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
12: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
13: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
12: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं

0: ॿुधण रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
0: जी हा, 3135525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हंधन ते फिज़ाई हमला सुल समावारे वफ़ाकी वज़ीर अतारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो. 23 सेप्टेम्बर ते अफ़गान सरज़मीन तां ड्रोन्स हमलनि जी कोशिश थी हुई. पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन्स तबाह कया हुआ. पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खे मुंह तोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधनि खे निशानो बणायो. हमलो बणायल हंधनि में ड्रोन जा ज़खीरो कयल थाक ऐं लार्चिज़ खे तबाह कयो वियो. लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं. इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते सां पयल आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि. वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूदु आहिनि पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं. इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक़चे सां मुलाक़ात. ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ऐं ख़िते में अमुन वारी कोशिशनि ते ॻाल्हियूं. परडे॒ही खाते मूजिबि इसहाक़ डार ऐं अब्बास राक़चे में मुलाक़ात गरियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे. ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारतकारीअ ते ज़ोर भरियो. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी ऐं नौजवाननि जी मुलाक़ातूं. वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं. शहबाज शरीफ चयो आहे त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख्रु आहे. नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि. पक आहे त नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा. हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी.

0: देखें, ये देखें, ये लोग हैं, ये देखें, ये देखें। ये
1: देखें।
0: हे भाव मानू ही ने, ये दिसो, ये तां दिसो था मानू ही ने, मथा भितू टपी आया है ने। ये दिसो। हाँ ये दिसो। आई मानू है ना।

0: सिंध में पुलिस गर्दी इंतिहा ते पहुची वही। कलम धणी भी पुलिस गर्दी खां बची न सघिया। राधण में केटीए न्यूज के रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ के घर ते रात देर सां पुलिस की चढ़ाई। चादर ए चार दीवारी जो तकदस पाए माल न्याणियों से बदतमीजी। दरवाजा भी ट्रोड़े छड़ा। साफी मुझे घर ते चढ़ाई खिलाफ कलम धणियों जो एहतजाज। पुलिस गर्दी की मजम्मत जिम्मेवार पुलिस एहलकार खिलाफ केस दाखिल करे कार्रवाई करण जो मुतालबो। नान कुरेशी है सिंध की वादत खिलाफ थन्दड़ गाल रद्द क्यूं था। सिंधु के किनारन ते गर्दी एहतजाज कयो वेंदो। करोड़े सिंधी समुंड दरिया जमीनू बेला जबल बचाने ला रोडन ते निकरंदा। नौशेरो फेरोजी अदालत में अगोणे वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई मसरूर जतोई समेत बेन के खिलाफ अठ केसन की बुधनी। मसरूर जतोई पेश। मुर्तजा जतोई तबियत खराब होने सबब पेश न थियो। मोरो में घरू वजीर ज़ियाल अंजार के घर ते हमले वारे केस की बुधनी थी। ठठे में गुजे भरसा बनी में नौजवान जो वण में टंगे लाश हथायो है। गेनो वलिद सोमजी जो लाश अस्पताल मुंतकिल। गुपचाणी भरसा ट्रॉलर ए कार में टक्कर लगन सबब पी पुट फोत। अलियाबाद स्टाफ वट हादसे के नतीजे में कार सवार गुलाम हैदर मंगसी ए मुनवर मंगसी फोत थिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तवां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वडे सूर खां परेशान आयो? छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। एक आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी

0: पातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुम 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
1: जी हा, 3135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 Network सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस. निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राबते जे लाइ फोन करियो 0326638879 and 0312401287. सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं कदम.
4: खुशखबरी. अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे. यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244.
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316.
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे।
3: जग खत्म करे सके तो अमेरिकी परने वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका लाइ वॾो मसलो एटमी हथियारनि वारो आहे। ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजण घुर्जन। इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रम्प बि तेहरान सां मुआहिदो करे सघे थो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़चे सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही खाते मूजिब इसहाक़ डार ऐं अब्बास इराक़चे में मुलाक़ात गडि॒यल क़ौमुनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे। ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सफ़ारतकारीअ ते ज़ोर भरियो। लॉन्ग मार्च मुल्तवी थियण ताईं पीटीआई सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। इस्लामाबाद में कंटेनर रस्ते सां पयल आहिनि ऐं रस्ता खुलियल आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त पीटीआई वारनि सां बैकडोर राब्ता मौजूद आहिनि, पर ॻाल्हियूं लॉन्ग मार्च मुल्तवी करण बाद ई कयूं वेंदियूं। इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। शहबाज शरीफ चयो त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख़ुरु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि। पक आहे त नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी।

देखें, ये देखें, ये लोग हैं, ये देखें, ये देखें। ये देखे, हे भाव मानू ही नहीं। ये देखे, हे भाव मानू ही नहीं।

0: सिंध में पुलिस गर्दी इंतिहा ते पहुची वही। कलमदनी भी पुलिस गर्दी खां बची न सघिया। अमन अमान बाबत खबरू आवाम ताई पहुंचाइण भी डोह बणजी वयो। रादड़ में केटीएन न्यूज जे रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ जे घर ते रात देर सां पुलिस जे धाड़ेलन जिया चढ़ाई। बिना वर्दी अहलकारन पारां चादर ऐं चार दीवारीअ जो तकदुस पाए माल न्याणियुनि सां बदतमीज़ी। दरवाज़ा बि ट्रोड़े छॾिया। साफ़ ई मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ कलमदड़नि जो एहतजाज। ज़िमेवार पुलिस अहलकारन ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे कार्रवाई करण जो मुतालबो। जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी 27 सेप्टेम्बर ते एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। सनान कुरैशी चयो आहे त सिंध जे वादत ख़िलाफ़ थींदड़ ॻाल्हियुनि खे रद्द कयूं था। सिंधु जे किनारनि ते गॾु थी एहतजाज कयो वेंदो। करोड़े सिंधी समुंड, दरिया, ज़मीनू, ॿेला, जबल बचाइण लाइ रोडनि ते निकरंदा। नौशेरो फेरोज़ी अदालत में अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं मसरूर जतोई समेत ॿियनि जे ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी। मसरूर जतोई पेश। मुर्तज़ा जतोई तबियत ख़राब हुअण सबबि पेश न थियो। मोरो में घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जे घर ते हमले वारे केस जी बि ॿुधणी थी। खैरपुर भरसां
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकर तवां खे मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, बुख न लगण या बदहज़मी जड़ा मसला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: ऐत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252586।
1: जी हा, 3135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कसीदा जो कि आप लोगों के साथ मिलकर हमने एंजॉय किया। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है जनाब। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपको कैसा रिजल्ट मिला है, और साथ ही साथ अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे बताइए जल्दी से कब कब इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक आप हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिलनी चाहिए, और आप बस जाएं अपने करीबी जनरल स्टोर से और वहां से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट नाम लेकर तलब करें। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे ये बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये तो बताएंगे आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो कैसे आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, सवाल बताते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं आप हमारे प्रोग्राम में शामिल किस तरह से होंगे। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताइए वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर उसे पूरा साल इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, गरीबी की इंतहा हो गई आप मुझे बताएं कि वो क्या है जो साल में एक बार हम खरीदते हैं लेकिन उसे पूरा साल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ हाँ जी, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, तो मुझे बताएं ये क्या हो सकता है। और साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, जैसे आप सर्च करेंगे तो आराम से हमारा पेज मिल

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321430
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर जे ज़रिए स्टोर पहुचाई वेंदी 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 9:30 लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज।
3: फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, माथिली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ही बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा आपको रिजल्ट कैसे मिले। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताऊंगे कि अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करने के बाद किस तरह के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई जरा कान खोल के सुन लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है जैसे कोई नाइट क्रीम होती है रेगुलर आप इस्तेमाल करे होते हैं। भाई जान, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, एक अड़ो प्रोडक्ट मार्केट में एंटी वाया जिनको तुम सद दिन का इंतजार कर पाया। सद दिन का अगर तुम इंतजार कर पाया तो तुम्हारे लिए कोई भी अड़ो प्रोडक्ट तुम्हें मार्केट में बिल्कुल भी नजर नहीं दो। जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे डिसना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वे सब चीजों एड थे हलन जो तुम्हारी स्किन के सफा सोनो, सफा प्यारो, सफा गोरो गोरो बनाए छींदी। और जी सबसे बेहतरीन बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि भाई वाकई आप कुछ तो अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो हटके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसको इस तरह से ऐड किया गया है कि बाजार तो ये एक नाइट क्रीम लगती है लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून्स वगैरह में अपना पैसा जो है वो वेस्ट करें या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घंटों बैठकर सैलून में अपना टाइम वेस्ट करें तो उस सूरत हाल को देखते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि आप लोगों का पैसा भी बचाता है, आप लोगों का टाइम भी बचाता है। वो कैसे? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये जना महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए तो भाई ये सोचकर इस्तेमाल कीजिए कि भाई हम जो है ना ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका यूज करने के बाद हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि भाई हमें आज तक कभी पहले नहीं मिले हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो भाई आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो जल्दी से कीजिए और ये बात आप लोगों को बता दी चलो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने सारे प्रोडक्ट है हमारे पूरे पाकिस्तान में, उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं प्रोडक्ट में है जनाब। तो इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इतना कमाल का प्रोडक्ट है, इतना शानदार प्रोडक्ट है तो इससे मुझे तो ये चाहिए भाई आप लोगों को बता दूं कि आप जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और अप्लाई करके मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। बाकी तो आप देख ही रही हैं जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उनका कितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता जा रहा है। तो आप भी लगाइए और अपने चेहरे को चमकाइए क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में शामिल करें जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी जल्द की जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आपकी जल्द लोग देखकर कहेंगे कि भाई क्या हो गया, कौन सा जादू कर रहे हैं, इतना फास्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है। और जनाब आपके चेहरे पर जो ये ताजगी होगी, ये एतमाद होगा, वो आप देखकर खुद ही कहेंगे भाई सदरा तो सही पे चवे पर असाई हो यहाँ से जो इस्तेमाल न पाया कहूँ बाबा तुम इस्तेमाल करो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वहाँ जी खूबसूरती में मॉइस्चराइज जो ना मॉइस्चराइज भी थी वही तुम्हारी स्किन आई तुम्हारी खूबसूरती में 4 छंट लगी वेंदा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड़े तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहो आ अगर कुछ मानू फर्ज कर क्रीमू न लगाए सकना है यानी कि तवे स्किन से रिलेटेड को मसलो आए को प्रॉब्लम आए आई तुम क्रीम न था लगाए सको तो तवे डी स्किन जो फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल आए आई डी स्किन जो फेस वॉश है ना यो जी तुम इस्तेमाल क्या
तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां वाकई का शइ इस्तेमालु करे रहिया आहियो। छो त मार्केट में तव्हां वेंदा आहियो त खोड़ सारा प्रोडक्ट तव्हां ॾिसी करे असांखे अखियुनि खे मतिलबु ई महसूसु थींदो आहे त बाबा हीउ बि वठणु घुर्जे, हीउ बि वठणु घुर्जे, ऐं हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो, हीउ बि ॾाढो सुठो लॻे थो। पर उहे जेके सभु प्रोडक्ट हूंदा न उन्हनि खां हटके आहे डी स्किन फेस वॉश, जेको तव्हांजे लाइ एतिरो प्रीमियम तरीक़े सां तयारु कयो आहे। जॾहिं तव्हां ॾिसंदा त तव्हांजी हिकु अखि जेको भाए वेंदी त वाकई बाबा हीअ शइ ॾाढी भली आहे, असांखे वठणु घुर्जे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेके प्रॉपर्टीज़ शामिल आहिनि डी स्किन जो फेस वॉश अगरि ॾिठो वञे त उन में तव्हांजे लाइ एक्स्ट्रा हिकिड़ी चीज़ एड कई वई आहे, जंहिंजो नालो आहे हाइलोरोनिक एसिड सीरम। ऐं हाइलोरोनिक एसिड सीरम जेको आहे न, इहो तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे, ऐं ही हर स्किन जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। यानी कि तव्हां अगरि नंढा आहियो, तव्हां जवान आहियो, तव्हां कुराड़ा आहियो, हर स्किन जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। उन सां फ़ाइदो इहो पहुचंदो आहे तव्हांजे चेहरे खे त तव्हांजी स्किन जेका आहे डीपली क्लीन रहंदी आहे, तव्हांजी स्किन खे डीपली क्लीन कंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन हाइड्रेट रहंदी आहे, ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे मॉइस्चराइज़ बि रहंदी आहे। यानी कि कुझु माण्हू जी स्किन तव्हां ॾिठी हूंदी भई ईअं रुखी सुखी महसूस थींदी आहे, ईअं लॻंदो आहे बाबा ॼण निंड पूरी नथी अथसि, ॼण बीमार आहे, तबियत ख़राब अथसि। ऐं कुझु माण्हुनि खां वरी पुछबो बाबा छा थियो आहे, तबियत सही न आहे साईं, तव्हांजो मुंहुं ॿुधायो थो त हू चवंदा न मां ठीकु आहियां, बसि मुंहिंजी स्किन खे अलाए छा थी वियो आहे, स्किन एॾी बेजान ऐं बेरोनक लॻे थी। त उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधायो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो, डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिसो, ऐं तव्हांजी स्किन ते निखार अची वेंदो, ग्लो अची वेंदो, हिकु अलॻि ई ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वेंदी, ऐं तव्हां पाण ई चवंदा बाबा वाह वाह ही त कमाल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हांखे नंबर ते राबितो करणो पवंदो। जेके नंबर तव्हांखे ॿुधायो त उन्हनि खे ज़रा नोट करे वठिजो। ओके जनाब, सो नंबर आहिनि 0332738403 09, 3232 84 309, 3 3 2 7 3 8 4 3 0 9। ठीकु आहे, इहो टिनी तरीक़नि सां तव्हांखे नंबर ॿुधायो। अगरि इहो नंबर अगरि बंदि हुजे या फिर अटेंड न थिए नथी कॉल त तव्हां ॿिए नंबर ते ट्राए करे सघो था। ॿियो नंबर आहे 03 12 50 25 907, 3 12 50 25 907, 3 1 2 5 5 9 7। चले ये नंबर आप डायल कर लीजिएगा जो कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराने में जरा हेल्प करेंगे। आप उनकी हेल्प कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन, जो कि भाई नाम ही काफी है। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा बातें मजीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों में ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों के फीडबैक सामने प्रोग्राम रखूंगी। आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि मुझे बताइए कि वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, ये मतलब सवाल पूछकर मेरे को वो वाली मीम याद आ गई कि हमने गरीबी देखी है हमने गरीबी देखी है। हाँ जी, आप बताएं।

जी वशमल एक गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप कहां से मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुस्कान, ये मंजूर चकरानी का सॉन्ग हां जी लगाते हैं आपके लिए ये वाला गाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और अख्तियार अली भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम वेलकम। अबू हनीफ अलबलोची आपने टॉपिक का जवाब दिया है।

0: शुक्रिया।
1: ओके जी, अबू हनीफ अल बलोची, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बढ़िया हो गया जी ये तो। जैन अली हमें सुन रहे, कहते हैं कि वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। कहते हैं कि तेरी शर्तों पर ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह वाह, वेलकम। ओके जी, अहमद अली समेजू हमारे साथ मौजूद है, समूरी संगत के सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, निदड़ी हमारे साथ प्रोग्राम में है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, वेलकम टू शो। तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं गुम हो जाती हूँ, टॉपिक वो है अलाइसा। सही है, तबीयत का ख्याल रखो बाबा। और किशोर भाई हमारे साथ कहते सलाम अदा, असा भी मर्द हजरात आयो। बिल्कुल जी, को शक ना है, तमा असा ना सोना भा आयो, आई तमा डेसिन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना है। उनके अलावा शमन अली हमारे साथ कहते कि ये लहजे फकत रसीले हैं, ये लोग बड़े जहरीले हैं। तमा सफा सही फरमायो है, डाडो भलो। एस एन आर भाई वालेकुम अस्सलाम, कहते मोला सलाम अदा। ओ माय फेवरेट आर से मैडम मुस्कान जी, कैसी आप? वेलकम कहते हैं दिल से, आपको भी वेलकम कहते हैं। आगे नहीं बोलूंगी। बिल्कुल जनाब, वशमले तो ठीक है, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे ये जरूर बताया करिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने कहाँ से परचेज करी ये भी बताइए। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए हमने जो है ना वो हर जगह अवेलेबल करा दी है, लेकिन ये बात भी जरा आ जाती है बीच में कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। तो आपको जो नंबर बताया जाता है प्रोग्राम में उसके ऊपर बस रब्ता कर लिया करें। रब्ता करने के फौरन बाद ही आके करीबी जनरल स्टोर पर तारिक भाई जो है वो अवेलेबल करा देंगे, है ना तारिक भाई? हमारा प्रोग्राम सुन रहे करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास में भी अवेलेबल है। बिल्कुल जी, तारिक भाई मीरपुर खास आज विजिट कर रहे हैं और मीरपुर खास में जितने भी जनरल स्टोर है वहाँ पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। तो आप भी जाइएगा और परचेज कीजिएगा। बाकी तो आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने बाकी है, ताकि हम तारिक भाई को बता के वहाँ पर भी अवेलेबल कराएं, ठीक है?

आप ही भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा गए, खूबसूरत हो गए और दादा लगे थे वाह शैम्पी क्या गाना लगाया है, अच्छा है ना, बिल्कुल जी। और यहाँ पर तारिक खान हमारे साथ है और तारिक भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और साजिद हुसैन सुमरो भाई सलाम सिदरा वाह जी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ना बाबा। और फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लालकाना से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, शमन का गाना बिल्कुल आपको सुनाया जाएगा। ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी छा जाइए। अच्छा वसीम अली हमें सुन रहे, आपने टॉपिक का जवाब दिया है ओके। और फहीम भाई कहते सांझर वारा कॉमेंट तमा रीड कया हुआ, बिल्कुल कया हुआ सभी रीड करना है। और इकबाल आचार्य हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी। अली रजा लगारी आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू फर वो आपने टॉपिक का जवाब दिया है। अच्छा दिया कहती है कि डेविल की कमी मैं पूरी करने में आ जाती हूँ ना, डेविल बहुत बिजी है, आपका शो की टाइमिंग ही ऐसी है ना कि बेचारा काबू में है वैसे हमारे काबू से बाहर है लेकिन किसी के तो काबू में है। हाँ भाई बड़ी से बड़ी चीज किसी ना किसी के काबू में जरूर होती है, ये चीज याद रखा कर।

0: देखा।
1: हाँ जी, क्या बात है। बिल्कुल सुना, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सदराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताइए जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं ये भी बताइएगा। नजर मोहम्मद भट्टी भाई में सुन रहे हैं जनाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। कहते हैं कि आंसर तो मुझे अपनी आवाज में 5 मरतबा स्वीट बिग नाइन और वो है अब तो ये सबको पता चल जाएगा ना। दिया है तो फिलहाल अभी को रहने देते हैं। और चाचा खाले तो आपने लिंक शेयर कर दी है, ओके हो गया जी। और कहते हैं कि अम्मा जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे शो में सानी लाइव गाने जी लिंक शेयर किया। हाँ चाचा मेहरबानी तवाजू। बस हाने तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी इस्तेमाल करे बैठो। मलिक नजर हुसैन हमारे साथ ही भाई, आपको भी वेलकम हो गया। बहावलपुर से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या बात है।

के तार थे। बिल्कुल अपनी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ मुझे बताइए आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा किशोर भाई कहते हैं ये दिया भी जिया जी वाइफ डे में सच्ची उदाहरण तो मुख्य भी क्यों हमारा दिमाग जो है वो एक जैसा काम कर रहा होता है ऐसा क्यों बताएं मुझे। फहीम भाई कहते हैं कि दादा टॉपिक का जवाब है आपको मिल गया है और मैं जवाब नहीं दूंगा कॉपी हो जाएगा और अगर चलें ठीक है ओके ओके आज वैसे आपने सबसे पहले जवाब क्यों नहीं दिया। अच्छा चाचा लिखते हैं कि अगर आप किसी ऐसी चीज का बोझ उठा रहे हैं जो एक बार खरीदने के बाद पूरा साल चलती रहे तो जरा बताएं कि किस चीज के बारे में मिसलन घर मोबाइल इंटरनेट बिजली सोलर या कोई और चीज़?

0: आप थोड़ा सा इशारा दे दे, मैं फौरन बता दूंगा।
1: बार बार मेरे दिल के तार के तुझ पे
0: है। ये तमाम चीजें तो नहीं है और ही कुछ ये हिंट काफी आपके लिए। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से, आपको भी वेलकम है। जेकब आबाद में भी आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा अर्ज मोहम्मद गोला भाई। अच्छा अनवर भाई हमारे साथ कहते हैं कि हवा में रक्स सा है, दिल की धड़कनों में है नूर, गमों के बादल नाक वास्ता हुए हैं, दूर दूर चमक रहा है मुकद्दर का हर सितारा, आज खुशी से झूम रहा है ये आलमे पुर नूर, जो तलखियां थी कभी वो गुलाब हो गई, अब हमें मिला है जो चेहरा वो महताब हो गया, हंसी की धूप में महकता है कायनात का दिल, ये लम्हा ठहर जाए काश हो ये वक्त जरूर, हर एक समत से बिखरा हुआ सुकून का रंग, मिल गई है मोहब्बत की मंजिल मकसूद। कहते हैं अदी सदरा, मतलब पता नहीं क्या है वशमल, वो मेको भी नहीं पता, ये पता नहीं क्या है वशमल मेको तो मार्शमेलो लगता है बाकी आप अपना बताइए। और साथ साथ जिसकी ब्यूटी क्रीम लगा दे नहीं वो भी बताइए। और टाइम वाइज जनाब यहाँ पर न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक, यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाएगी।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बरकरार रखंदे दहशतगर्दन के कामयाबी सां निशानो बणाए जहनम भेड़ो कयो मारजी वे दहशतगर्दन वटा हथियार भी हत्या विया आहिनि. पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब. पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फिज़ाई हमला. सूचना वारे वफाक वजीर अतारण चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो भरपूर हक़ रखे थो. 23 सेप्टेम्बर ते अफगान सरज़मीन तां ड्रोन हमलनि जी कोशिश थी हुई. पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम जा 8 ड्रोन तबाह कया हुआ. पाकिस्तान अफगानिस्तान खे मुंह तोड़ जवाब ॾींदे हमले लाइ इस्तेमाल थियल 10 हंधन खे निशानो बणायो. हमलो बणायल हंधन में ड्रोन जा ज़खीरो कयल खाक तबाह कया विया.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GAFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज.
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे. यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244.
9: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10
9: बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे.

0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सक्कर मोरो मीरपुर खास मटियारी सक्कर मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और क्यों ना की जाए जनाब, क्योंकि इतना शानदार इतना कमाल का प्रोडक्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो हम क्यों ना बताएं उसके बारे में आप लोगों को, ताकि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना सारा फायदा आपको मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने वाले लोगों से पूछिए उनको कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करके देखी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो लाजमी ट्राई करके देखिए और इसी के साथ साथ हमें जरूर बताइएगा कि आपको भी रिजल्ट्स कैसे मिले। ओके जी, सबसे मजे की और बेहतरीन बात यह है ना कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो मेरी केडेड फार्मूले से तैयार किए गए हैं, यानी कि इन्हें डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो ये जो हमारे जहन में चीज होती है ना कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हमारे चेहरे पे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो अगर ये चीजें आप सोच रहे हैं या फिर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आप लोग इस चीज से जरा जो है ना वो फ्री हो जाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन से रिलेटेड ही तैयार की गई है। हर स्किन से रिलेटेड है जनाब, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के हिसाब से जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त फार्मूला बनके तैयार हुआ है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बहुत शानदार वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये 2-in-1 फार्मूला है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप भी कोई महंगा सा फेशियल अफोर्ड नहीं करते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और आपको मिल जाएगा जनाब ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार कि आप बस ख्वाबों में ही सोचते थे कभी, लेकिन अब वो ख्वाब सच हो सकते हैं। और हाँ, ये बात भी आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप ये सोच रहे ना कि भाई हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हमें खूबसूरती मिल जाएगी, ये चीज तो तय है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो बाद में क्या वो खूबसूरती वापस आपसे छिन जाएगी या फिर आप वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपकी पहले से स्किन थी, बेजान रुखी सूखी सी डल स्किन? तो ये तमाम चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको जो रिजल्ट्स मिल चुके हैं, आपको जो निखार मिल चुका है, जो खूबसूरती आपको मिल चुकी है, वो बस आप ही की है। एंजॉय कीजिए अपनी खूबसूरती को और हमेशा इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। ब्रेक लेना जरूरी होता है तो अच्छी बात है जी, और ये भी बात है कि आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये क्रीम आपके रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है और आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी जो स्किन है ना उसके ऊपर ख्याल अगर आप बहुत ज्यादा नहीं रख पाते हैं तो बस आप सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें और साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तब तो भाई क्या ही बात है। ये दोनों चीजें जो ना बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और साथ में डी स्किन का फेस वॉश लगाते हैं ना तब तो भाई वाह वाह हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिल चुके होंगे। क्योंकि खूबसूरत और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ एक मेकअप काफी नहीं होता बल्कि आपके दिन भर का जो ख्याल होता है, केयर होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप कोई अच्छा सा फेस वॉश ट्राई कर रहे होते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे ये कमाल होगा कि भाई आपकी जो स्किन है ना वो दिन भर जो है वो तरोताजा रहती है, शादाब रहती है और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा सा फेस वॉश आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो आपके लिए डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया, और जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना ये आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को जो है ना वो डीपली क्लीन करता है। आपके चेहरे पर जो ये गंदगी हो जाती है जमा या फिर डल स्किन काफी ज्यादा टाइम से ही आपकी, या फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई आपकी स्किन हमेशा जो है वो ऑयली क्यों रहती है, हमेशा आपकी स्किन जो है वो रुखी सूखी सी क्यों रहती है, तो इन तमाम चीजों का हल है जनाब डी स्किन फेस वॉश। आप इस्तेमाल करते रहिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है तो आपके चेहरे पर जो ऑयल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके चेहरे की स्किन अगर रुखी सूखी है तो वो भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। यानी कि ये हर स्किन के हिसाब से तैयार किया गया और आपकी स्किन हमेशा जो है ना वो हाइड्रेट भी रहेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी और आपकी स्किन के साथ जो है ना आप महसूस करेंगे कि भाई वाकई कमाल तो देखने को मिल रहा है। और ये
कमाल आपको तभी मिलेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसे आप 2 से 3 मरतबा रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। सुबह लगाइए, दोपहर लगाइए, रात में लगाइए, और जब आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई सदरा क्यों बताती है, क्योंकि ये है इतने कमाल के प्रोडक्ट, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल सुना, आप ट्राई करके देखिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738430 9। बुरी ट्रे सोबर ट्री है 73 84 309। योर नंबर आहे 03125025907। बुड़ी 312 50 907। ही नंबर सां जगह तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। अगर तहां जे करीबी जनरल स्टोर से खाली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी एंड फेस वॉश नथो मिले, नंबर से तुम रातो करे फेस वॉश के भी अवेलेबल कराए बैठो। मुकम्मल खूबसूरती हासिल कयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो, इस्तेमाल कंदा रहो, खूबसूरत इंदा रहो। ओके जी, इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया, और सवाल ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे वो क्या है जो साल में एक बार खरीदते हैं मगर पूरा साल उसे इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 1 और फेसबुक पर, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस है वो काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ही होता है कि बहुत सारे लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन का फायदा ही ऐसा है कि आप सारे लोग इस्तेमाल करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

बिल्कुल जी, अब तो आना चाहिए। और यहाँ पर गुलाब जो गुल हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते आपका प्रोग्राम नाइस है, ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और दर्द दिल हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको वेलकम कहते हैं। और लिखती हैं कि वफा सांसों की तरह होती है और सांस हर किसी पर खर्च नहीं की जाती है। क्या बात है, बढ़िया हो गया ये तो। और इनका अलावा अलीशा क्वीन कहती है कि और मुझे तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना भी तुम्हारे हक तलफी लगती है। आए हाय अलीशा, क्या बात कर दी। और कहती है कि पसंदीदा शख्स ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। बिल्कुल सही कहा। बस भाई, पसंदीदा इंसान का होना ही काफी होता है। और बहुत शुक्रिया अलीशा, आप हमारे साथ हैं। अलीशा को वेलकम कहते हैं। अलीशा मुझे बताइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या खाली आप प्रोग्राम सुनने में मसरूफ है? और फरवा गुल, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नजीबुल्ला बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपको मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और किशोर भाई कहते हैं कि बहन भा आयू, इन करे आप मुझसे सिर्फ 5 मिनट पहले इस दुनिया में आई हो, वरना हम जुड़वा होते। ये तहां के कहीं दस हो तो 5 मिनट में तहां का वडी आया। छोटी बोल देते, बड़ी क्या मतलब, मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ जितना आप बना देते।

अच्छा हनीफ अलबलोची कहते हैं कि मेरी नजर में ये दुनिया एक फूलों का बाग है और बाग में कई किस्म के फूल हैं और तुम उसमें इकलौती गुलाब का फूल हो। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अलीशा कहती हैं आप ही मेरा प्यारा भाई सदाम हुसैन, उसके लिए कोई अच्छा सा गाना लगाओ। चले मैं कोशिश करती हूँ, प्यारी अच्छा सा गाना सुनाएंगे, आपके प्यारे भाई को डेडिकेट करेंगे। और उनका अलावा जुल्फकार बोजार भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। लाड़काना में भी आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए।

वाओ क्या बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते रहिए। नंबर के ऊपर रابطہ करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा यहाँ पर पैनल पर आते हैं तो आपके मैसेजेस हैं। ओके जी, चाचा खालिद कहते हैं हमारे साथ, बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, काफी डेज थी वया आहिन, मुझे गानो न हलायो आ, हाजिर हाजिर अज तां जो गानो लाज़मी हलायूं था, आई ठीक आ तवां जो गानो मुखे मिली वयो आ, तां बस थोड़ो सबर कयो। और जी गोट मोमन तैयब थेबू का हबीबुला थेबू हमारे साथ कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आहे, सलाम तमाम के वालेकुम असलम प्यारा भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पया। और विलेज कोट अली नवाज जलबाणी से सिराज अली जलबाणी एंड मंजूर जलबाणी वीआईपी प्रोग्राम है, ममताज मोलाई का गाना सुनाओ। ममताज मोलाई तमाम बुध हों बेशक तमाम के मजो अची वो हों। और ये हमारे साथ है मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई, वालेकुम असलम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करे सर।

वैसे आजकल के दौर में सच्ची बात है, दोस्ती रखनी भी नहीं चाहिए किसी से भी नहीं। और गाना एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ है मंजूर अली खास के लिए, चाचा खालिद को शादी मुबारक, झंडो मरी का हाजिर हाजिर बाबा तांजो मुबारकों पहुंची गई चाचे ताई। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां। कुर्बान खास के लिए भाई हमारे साथ माजूद भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा साइमा मीर हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सिंजी सदाबहार, आरजे सदरा मुस्कान, शो दमदार आहे, मजेदार आहे, शानदार आहे, सॉन्ग सुनाओ सिंधी मेशअप, हलायूं था सोनी जिला सिंधी मेशअप डेडिकेट। अच्छा तमाम टॉपिक जो जवाब भी दिनो आए, सही आ सफा सही आ। और साइमा मीर कहती है सलाम बीमार निदड़ी के, और कहती है गुड न्यूज है उसके लिए, फिरोज खान का नया ड्रामा आने वाला है, देखना मत भूलना और दवाई पी लो, जल्दी सेहतियाब हो जाओ, सिदरों के शो की रौनक हो तुम। हाँ भाई नगाल में शक कोने को अलाय बुधे भी अथी अलाय हली भाई।

हाँ भाई हाँ, गाल ॿुधो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था कोन, गाना तो ॿुधो था पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल का फौरन बाद ही तमा के देखा खूबसूरती मिलंदी ना, मानू ता का वराए वराए पुछंदा तो बुधायो तो सही खूबसूरती कारा आंदी थव, इनके बुधायो जो बाबा ती डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जडी तमा इस्तेमाल कना तमा जी हर स्किन ते सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे, यानी कि तमा जी स्किन केडी भी तरह जी आहे हर स्किन जे मथा तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूला है, यो टेंशन भी ना बाबा केमिकल हुंदस या असा लगाए सकूं था नथा लगाए सकूं, तमा हर स्किन जे मथा आराम से लगाए सको था। मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, डॉक्टर ठायो आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी चढ़ींदा ॾिसंदा तो डबी ते भी डॉक्टर माई जो फोटो आहे, त ये निशानी अथव याद रखजो, वठण वञो त स्कीम खां बचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही वठी अचो।

अच्छा अदा चए तो असा दोस्ती रखना नायो पर मानो जोरी रखन त छा कयो हाने दौर नाय दोस्ती रखन जो जके पुराना फ्रेंड्स थवे ना वो काफी इन गंजे अन छडी दियो बस मानन के।

चाचू चए तो झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, बिल्कुल झंडो मरी में मिले थी। यो भाव ही बुधाई ना था, झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि अदा सबसे पहले जवाब इसीलिए नहीं दिया, एक मुसीबत मेरे ऊपर खड़ी थी, उसे बात कर रहा था, कमेंट भी तैयार कर रहा था तो आपको पहले जवाब मिल गया। अच्छा सही उनका अलावा जो आसो तालिम मरी भाई से गड मौजूद है तमाम खोट सारा कॉमेंट आय भाई थैंक यू सो मच तुम गड आयो पोस्ट के लाइक शेयर कदा रहो इत मूँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मोटी जल्दी तुम ये चाहती तुम इतने वेठा हो काडे भी नो पा जगह त न हिलजो बिल्कुल जी वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m. This time.
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
0: Yeah.

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0326638879 & 0312-34-01-87। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130।

0: 8631 63.
1: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।

0: ते सुबुह 10 वगे का रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारन जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: ऐं हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
5: जी हाँ, 2315-2575-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: घर तोड़े तो
1: ओगरी तो आप सुनने वाली तमाम तरह समातों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

ओके जी बिल्कुल, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारी फजली मौजूद है। कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो जानू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। कहती है चाय पियो, इस वक्त चाय हम शाम को पीते हैं। और कहती है शादी की बेहतरीन उम्र 70 साल है, ना ज्यादा अरसा ससुराल का, हाँ जी ससुराल का अजाब, ना लंबी अजियत, बस मुख्तसर तजुर्बा और सीधा आखिरी सफर। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही उम्र बता दी, वैसे सही है, इससे बेहतर है इंसान करे ही ना। और कहती है सुनो प्यारी, कल वैसे इंग्लिश गाने आपने अच्छे लगाए थे और सॉन्ग्स अच्छे प्ले किया करें। हाँ मां कोशिश करनी आता गाना सुठा सुठा प्ले कर, पर माण्हुनि जी वरी फरमाइशूं बि अची वेंदियूं आहिनि त बस पोइ मिक्स गुचुण मुचुण थी वेंदो आहे कमु, समझो था। और मोहम्मद गोठ मोहम्मद तैयब थी हबीबुला थे भाई, कहते चाचा खाले तो जुड़ी जुड़ी सच में शादी थी आए। अरे बाबा छो चाचे जे कड पे आयो बेचारे के घर में कटराई दो चाचा मेरे नडी मजाक में चयो सी। और ये हमारे साथ हैं जी गोठ मोहम्मद तैयब थी हबीबुला थे भाई, कहते हैं कि बेस्ट आरजे जी सिद्रा मुस्कान, यहां गाल सच्ची आहे न बाबा, ना सच्ची तमाम बस इते स्टॉप फुल स्टॉप लगायो सिन गाल के, आई तमा वन्यो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पांज लाए परचेस करिए चो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा लगाईना तो अगर ताजी शादी ना थेला तो शादी कराइंदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने का फौरन बाद ही तवे जो निखार मिले तो जो खूबसूरती मिले थी जेका चमक तवे चेहरे से अचे थी ना, वह सब ऐसी तवे नोटिस कदा चवंदा बुधायो तो सही पाया इस्तेमाल कर एडा खूबसूरत थी वह जाहिर सी गाल तवी शादी ना थे तो तवी शादी भी थी वी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इो कमाल है बाबा तो ही मेडिकेट।

ओके जी, बहुत ही प्यारा सा मेशअप यहाँ पर प्रोग्राम के जरा लिस्ट में मौजूद है, आप एंजॉय करेंगे. साथ साथ मैं जरा आप लोगों को डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ताकि जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट किया उनको पता चले कि भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम के क्या फायदे हैं. तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डे स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के फौरन बाद ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे, जो सिर्फ दो रातों का अगर आप इस्तेमाल करते ना, सिर्फ दो रात ही अगर आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं. और डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है, और ये जो चीजें हैं ना, विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स के बड़े बड़े महंगे महंगे जो फेशियल्स होते हैं ना, उनके अंदर इन चीजों की एडिशन की जाती है. तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो

फेशियल वाले मिलेंगे. तो अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बातों तक ये चीज महदूद है. अगर आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो वाकई आपको वो जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आप लोगों को बताए जा रहे हैं. क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है. तो आप बड़े लकी हैं कि आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में पता चल गया है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिए. अगर आपके घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी खुद की शादी हो रही है, तो लाजमी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ट्राई करके देखिएगा. क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज की टेंशन भी भाई हट जाएगी कि आपके चेहरे की स्किन खराब हो सकती है, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, या फिर कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं. भाई ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही सेफ प्रोडक्ट और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी वो चीजें ऐड की गई है जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है और जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है. तो जाइए परचेज कीजिए. मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई फायदा उठाइए. अगर आपको ऐसा प्यारा प्रोडक्ट बताया जा रहा है तो मेरा तो दिल कराए कि जल्दी जल्दी से जाइए और परचेज करके आइए और इस्तेमाल कीजिए. ये नाइट प्रोडक्ट है, नाइट क्रीम है, तो इसको रात के टाइम आपने इस्तेमाल करना है. दिन के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड किया करें क्योंकि दिन में आप वैसे भी थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, धूप में जा रहे होते हैं, बिजी होते हैं. तो बस रात का टाइम निकाल लिया करें अपने आपको जरा रिलैक्स करके. अपना फेस वॉश करें डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें और सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है वो फेशियल की चीजें ऐड की गई तो इसको हम रगड़ेंगे फेस के ऊपर अप्लाई करके, तो ऐसा मत किया करें. ये फेशियल की चीजें इसके अंदर एड जरूर की गई लेकिन ये फेशियल नहीं है. तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को नाइट क्रीम की तरह ही इस्तेमाल करेंगे और सुकून से लगाइए, प्यार से लगाइए, खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और नंबर जो आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उसके ऊपर राबता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए.

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा यहाँ पर मेशअप, आप एंजॉय करें और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस दें। जी अखलाक भाई हमें सुन रहे हैं, अखलाक भाईजान बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा। और अब्दुल वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई हमारे साथ हैं, भाईजान को खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने कहा अलावा तुम इतना स्टिकर शेयर करी सदन बाबा छो।

0: अरे क्या बात है। और इसी के साथ साथ चाचा कहते हैं कि सिडो बेटा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम में विटामिन सी एड है या फिर नहीं? नहीं, विटामिन ई बीट्स मौजूद है जनाब, विटामिन सी नहीं। और विटामिन ई बीट्स विटामिन सी से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसका आप यूज कीजिएगा। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जहाँ तू है वहाँ मेरे सही है भाई अखलाक भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। वैसे आजकल आप क्या बिजी रह रहे हैं कि प्रोग्राम में कम आ रहे हैं? ओके जी, साजिद हुसैन सुब्रो कहते हैं वाह वाह वाह जो सॉन्ग आहे, आप हमें मिठो देरों से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम हो गया आपका भी। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है, शो अच्छा है सिस आपकी तरह, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं रमजान भाई। किशोर भाई कहते हैं कि अगर किसी इंसान में सारी आदतें एक जैसी हो, सोच एक जैसी हो, तो लोग कहते हैं तेरा और उसका जन्म में कुछ मिनट का फर्क होगा। हाण समझा, हाण मां समझा, हाण समझा यानी कि हू गडगड पैदा थिया हूंदा इन वजह सां। ओके, सो इन चीज के बारे में ज्यादा मुख्य नॉलेज ना ही, दिसनासी अगर या चीज सही साबित थी तो मैं चवंदा वाकई पर उनका पहले तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर, तमाम भी इस्तेमाल किया थी तो तमाम भी इस्तेमाल कर। और हिदायतुल्लाह कहते हैं ओके ओके ओके, अब्दुल गफार भाई खुश आमदीद आपको भी कहते हैं, आप हमें मेलसी से सुन रहे हैं। नजीबुल्लाह बिरोही भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मोहम्मद जमान कहते हैं कि ये सिंगर आजकल
1: मोहब्बत,
0: हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, हर किसी को हक है अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का, तो किसी को टोका मत करें और उसे आप मशवरा दे दे कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर जो रिंकल्स आ रहे हैं उनको, तो उनको जरा कंट्रोल में रखे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई आपके चेहरे की जो मतलब उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, आपके चेहरे पर रिंकल्स आते जा रहे हैं, तो उनको भी कंट्रोल में रखिएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मतलब बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे।

हाँ जी, क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा गाना। अच्छा मोहम्मद तैयब थे वो बहुत हमारा टॉपिक जो जवाब देना है जे को सही आ है। फरमान अली हमें सुन रहे हैं, फरमान भाई हमें घोटकी से सुन रहे हैं, फरमान भाई को वेलकम कहते हैं। फरमान भाई आप घोटकी में जाइएगा और वहां से जाकर डेज कंप्यूटर क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है। मिस्किन जमाली हमें सुन रहे हैं उस्ता मोहम्मद से, हाजी अल्लाह बख्श जमाली, पहलवान अली जमाली, मोहम्मद बख्श जमाली, भांजो मोबतवान प्रोग्राम बुधुपया। और वसीम भाई तुम गाने की फरमाइश कैया पर थोड़ी लेट कैया, सो यो गानो असा सुभाने बुधंदासी न बल्कि बेड़ी बुधंदासी, सुभाने जी सुभाने बुधंदासी। तो सुभाणे त जुमो आहे न।

अच्छा ऐसे निगत जी आवाज में भी हुयो छ वो घर मुखे खबर नहीं। रमजान अली हमें सुन रहे भाई, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए ठीक है। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

0: अच्छा रमजान भाई, आपने जो बाकी मुझसे पूछा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप सिर्फ मुझसे मेरे बारे में पूछा करें। मैं पूरी दुनिया से बेखबर इंसान हूँ, तो बस मुझसे मेरे बारे में बातें पूछा करें। और उनका अलावा
1: में तो
0: हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।
1: जो प्यार समझी पसंद क्यों से।
0: और सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी जी वेलकम कहते हैं। किशोर भाई कहते अदा जिनकी शादी थी वही चाहुन जी वरी थी, अगर हो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए तो हाँ बिल्कुल चांसेस था।

क्या कहती हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमें आपका जो सिटी है ना ये मुझे जरा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से आप कहती हैं कि वहाँ पर नहीं मिल रही है। मैं जो आपका ये कमेंट है ना ये जरा मैं इसको भेज देती हूँ अपने जरा ग्रुप के अंदर, तो पता चल जाएगा कि आपके यहाँ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। ठीक है।

बिल्कुल जी, अड़ी दिल कारे कना सी पर दिल के थोड़ो साइड ते रखोस ए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठी अचो। सही आ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जदी ता वठी ना ना तवाने चेहरे जा सब प्रॉब्लम दूर थीना, ता पाणी चोना वाह सई वाह असा पिना छो न पया वठी चो। ए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा जला हर जगह ते असा अवेलेबल कराई छडी आ है। सबका पेरी ता पाने करीबी जनरल स्टोर्स ते वणो ओ ता मालूमात वठो ए ता के खबर पेजी वेनी त किथे किथे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। अगर ता के नबी खबर पती त जेके नंबर ता के प्रोग्राम बुधाया वेना है ना, उन नंबर ते तवा राबतो करी वठना कयो या कॉल कना कयो या मैसेज कना कयो। भाई साहब का पुछो भाई साहब किथे किथे अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जी असा वठी सगू असा इस्तेमाल करे सगू ए असा सोणा थी सगू। जी बाबा पूरा 25 साल ट्रस्ट ना है तशा एनआईसी देखारिया। आई एम नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही। मनो न मनो और उनका अलावा फहीम भाई तांजो गानो के चो त असा के ना है वणदो। भला भला गाना फरमाइश कंदा कयो तो छो न वणदा। एसन ता लगायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा, शादी कयो न कयो तांजो पर्सनल मीटर आहे। मोहम्मद समान कहते ये एक मासूम लड़की का सवाल है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितने दिन लगाने के बाद शादी हो सकती है? भाई उसको बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम रिजल्ट्स तो आपको दो दिन बाद ही देगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शादी कब करेंगे।

जी चाचा अपना ख्याल रखिए और बस ख्याल रखिए। चलिए हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है तो आप लोगों से इजाजत लेते हैं और हजार बहुत थैंक यू सो मच तांजु मोहबित हुआ और तालु मरी बात तांजु मोहबित हुआ प्रोग्राम बुध पया अच्छा आधा कहते हैं कि दिस त सही केडो मासूम अंदाज में चए पे मुखे खबर ना है वैसे जितनी तोखे खबर है उतनी शायद गूगल के भी ना है खबर इस बारे में पता नहीं था जिस बारे में आपने बात करी तो जो आउट ऑफ सिलेबस होती ना चीजें वो शायद मैं नहीं उनके बारे में रिसर्च करती बाकी तो हाँ ये चीज है भाई वो अकेड़ी चीज आज का मुख्य ना खबर सब मानू अचे मुखा पूछना बारे में बुधा आई एम वेरी ज्ञानी बाबा सो इंसान है भाई उसको सारी चीजों के बारे में नहीं होता पता ये चीज याद रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और ये चीज बस हाँ गालू तो खत्म क्यों था पर असो साथ खत्म नहीं दो बाबा कदें भी तमाम असो मोहबतू ये बरकरार रहंदी तमाम असो साथ हमेशा बरकरार रहंदो अस तवा सा गड हुंदासी तवा सा गड हुंदा सो वरी मिलूं था तवा सा 5 बजे वाले प्रोग्राम में पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी हो जे तो माजरत कयूं था आई जने को फीडबैक रे जी वया तो बाबा माजरत मोकलानी नाही सिलसिला में सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मेरो कयो मारती वेल दहशत गर्दन वटा हथियार बेहद कह रहा है. पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब. पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फिजाई ए ड्रोन हमला. पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल था ड्रोन जा जखीरा तबाह. सुद समावारे वफाकी वजीर अतारड़ चयो आहे त पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई आहे. पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ए जखीरन के कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो वियो आहे. पाकिस्तान अंदर थींदड़ दहशतगर्दी में अफगान शहरन जे मुलविस हुजण वारियूं वधीक शाहिदियूं साम्हूं अची वयूं. मस्तोंग में मारिजी वियल दहशतगर्दनि में अफगान शहरी बि शामिल. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द ख़लील अहमद वटां अफगान कार्ड ऐं बे दहशतगर्द ज़ुल्फ़कार अरब अबू उमर वटां अफगान गुजेतरा इदारे JDI जो कार्ड मिलियो. 2025 में अफगान तालिबान ऐं भारतीय गुझे इदारे राह वटि विच में गठ जोड़ जो इंकशाफ थियो हो. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ईरान तकरार खत्म कराने लाइ पुरउमीद खिते में अमुन जे क़याम वारे कोशिशूं जारी रखण जे अज़म जो वरजाओ. न्यूयॉर्क में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जो समूरो ध्यानु ईरान अमेरिका जंग जे ख़ात्मे ते आहे. पाकिस्तान जूं अमेरिका ईरान सिकतान जे ख़ात्मे लाइ सालसी वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि. दोस्त मुल्क बि कोशिशनि में सहकारी आहिनि. उमीद नाहे छॾी समूरो ध्यानु तकरार जे ख़ात्मे ते आहे. शर्त पूरा थियण ताईं नाब नहर मुस्कुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं. ईरान जो वाज़े ऐलान. ईरानी अमलदार मूजिबि आब नहर मुस्कुलण वारो मामिलो जंग जे ख़ात्मे ऐं अमेरिकी फ़ौजी दबाउ में घटिताई सां ॻंढियल आहे. जेसिताईं ईरानी शर्त तस्लीम न कया वेंदा तेसिताईं आब नहर मुस न खुलंदो. ईरान एटमी हथियारनि सां हथ खणे त अमेरिका तेहरान सां जंग ख़त्म करे सघे थो. अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका लाइ वॾो मसलो एटमी हथियारनि वारो आहे. ईरान वटि कॾहिं बि एटमी हथियार न हुजणु घुर्जनि. इहो मुमकिन आहे त सदर ट्रम्प बि तेहरान सां मुआहिदो करे सघे थो. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चे सां मुलाक़ात. ॿिन तरफ़नि लाॻापन ऐं ख़िते में अमुन वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हियूं. परॾेही खाते मूजिबि इसहाक डार ऐं अब्बास इराक़चे में मुलाक़ात गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान साइड लाइन ते थी आहे. ॿिन्ही अॻवाननि अमुन जे क़याम लाइ सिफ़ातकारीअ ते ज़ोर भरियो.

0: फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी अवाजे पहेंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
4: मातली आई आसपास जी अवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% आई घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM।

0: FM 90.4
1: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़
3: वाली हिन सिंध ते का अहिड़ी वराण वरे जो सुखिया डुबरा पाण में भाकुर विझूं भरे ही कायम रहे क़यामत ताईं मोहबत कॾहिं न मरे पंजल थियूं न परे जेसीं जीअरा आहियूं जान में।

सदा शहर सिंध जे निज़ारनि ते लिखबो, मेहरान जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331-252-5786।
6: जी हा, 2315-2575-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: ブワンハイ。
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन के मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
6: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Reji wholesale Mohammadi Matli jite har dawa awan ke wholesale rate mein milandi, meha sekdo milandi, jeka medicine asawat barwakt maujood na hundi, wa bedi ghuraye puri kare dindasi. Gharu sarif huje ya medical store wara unan ke rider je zariye store या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जू पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जू छितू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐ सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान अंदर थींदड़ दहशतगर्दीअ में अफ़गान शहरनि जे मुलविस हुजण वारियूं वधीक शाहिदियूं साम्हूं अची वयूं। मस्तोंग में मारिजी वियल दहशतगर्दनि में अफ़गान शहरी बि शामिल। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द ख़लील अहमद वटां अफ़गान कार्ड ऐं ॿिए दहशतगर्द ज़ुल्फ़कार अरब अबू उमर वटां अफ़गान गुझे इदारे JDI जो कार्ड मिलियो। 2025 में अफ़गान तालिबान ऐं भारतीय गुझे इदारे रा विच में गठजोड़ जो इंकशाफ़ थियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरी वरितियूं। शहबाज शरीफ चयो त बासलाहियत नौजवाननि जी सलाहियतनि ते फ़ख्रु आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि, पक आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा, हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी। कराची इंडस्ट्री MQM जी हड़तालनि सबब बंद थी। हिन वक़्त में MQM लसानियत जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जी निना मेमण चयो आहे त कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ SHOs खे चूंडे मारियो वियो। MQM खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक जी सदारत हेठि अहम इजलास। रेलवेज पारां रोडनि जी बंदिश जी सूरत में तेल जी फरामी लाइ वधीक बोगियूं फराहम करण जी ख़ातिरी। वफ़ाक़ी वज़ीर पारां तेल वारे शहरनि जी बरवक़्त फरामी यकीनी बणाइण लाइ अॻुवाट क़दम खणण जी हिदायत। तेल जी निगरानी लाइ ओगरा पारां कंट्रोल रूम बि क़ाइम। अली परवेज मलिक चयो त अटक खे तेल वारियूं शयूं पहुचाइण वारे अमल खे यकीनी बणायो वञे। फ्यूल रिलीफ खां शहरनि खे महरूम रखंदड़ पेट्रोल पंप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

0: हमारे पास
1: ये देखे ये लोग हैं ये देखे।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं

0: रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 2315525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3241-230।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंद। मोहम्मद अशरफ लगारी सॻे खां राति 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 बजे खां राति 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि

0: ॿुधण रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: गुंदा हुआ
1: परिंद की आवाज
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: खुशखबरी, खुशखबरी। अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस, दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
2: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-32-41-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578
3: जी हां 2315525786
6: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 खां राति 10 ऐं हर आचर ते सुबुह 10 खां राति 10 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

शर्त पूरा थियण ताईं नाप नाए हरमूस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान। सदर मसूद पेज़शकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार याहया रहीम सफ़वी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़जी वेंदी। मुआशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे। वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तम करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तम थी वियूं आहिनि। हाणे को बि मुल्क ईरानी जहाज़नि खे लैंडिंग करण न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सदु ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां जीएचक्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाकात। आईएसपीआर मूजिब मुलाक़ात दौरान वितरफ़नि लाॻापन इलाक़ाई अमन ऐं सलामती ते ॻाल्हियुनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त पाकिस्तान मालदीव सां लाॻापन खे अहमियत ॾियूं था। लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। मालदीव जे स्पीकर पाकिस्तान जे इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेकाम लाइ किरदार जी साराह कई।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ऐं नौजवाननि जूं मुलाक़ातूं। वज़ीर-ए-आज़म नौजवाननि खां मुख़्तलिफ़ शोबनि बाबति तजवीज़ूं घुरे वरितियूं। शहबाज शरीफ चयो त बासलाहियत नौजवाननि ते सलाहियतनि ते फ़ख्र आहे। नौजवान ई पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आहिनि। पक आहे नौजवान ई पाकिस्तान जी क़िस्मत तब्दील कंदा। हुकूमत सहूलियतूं ॾींदी। सिंध जो विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टीवी सर्वे सां को बि फ़र्क़ु न पवंदो। एमक्यूएम ॿीहर लसानियत खे हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री एमक्यूएम जी हड़तालनि सबबि बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एसएचओस खे चूंडे मारियो वियो। एमक्यूएम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

0: ए गुटू बधी आया है ये नकाब पोश
1: आया है
0: यो वो भी तरीको ना है मुझे भाई को भी तरीको ना है
2: मोबाइल
0: यो छा यो सुठो कमा हे दिसो हथियार हे दिसो हथियार हे मानू दिसो हे राज चार था थे ना हे संग नंदा मासूम बार है हे इनन जो तरीको आ हे दिसो

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
2: मातली आई आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704-94-244।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
3: जी हा 231-5525-786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
3: मातली है आस पास की अवाम अलै खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962।

0: 35 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फजाई ड्रोन हमला। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल थाक ड्रोन जा जखीरा तबाह। सूद समाव वारे फाकी वजीर ताला तारण चाहिए था पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई है। पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स जखीरन के कामयाबी से निशानो बनाए तबाह कर।

0: Nel senso sentivo.
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर।

0: हड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली ऐं आसपास जी ख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704-9495-244।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 03026638879 ऐं 03012-1204-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
1: जी हा, 2315-2575-786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

जी जनाब, साज़ आवाज़ जे साथ में अवांजे साथ असांजे साथ इंशाल्लाह जुड़ियल रहंदो ऐं यकीनन पाण सभई गॾिजी हूंदासीं। अॼु गॾु गॾु यूनुस बकारी ऐं महफ़िल जेका हूंदी उहा असांजी जेका रस भरी रिहाण आहे उहा हूंदी ऐं उन में अवां असां सां शामिल थियण जे लाइ मैसेज बि करे सघो था। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ो आहे, लिखंदा MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 असांजो नंबर हूंदो, उन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। सो ॾिसंदासीं त अॼु असांखे केरु यादि कंदो, केरु मैसेज मोकिलींदो। ही आहे जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क, GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियो जी पेशकश अवांखे कीअं थी लॻे ज़रूर ॿुधाइजो असांखे, छो त अव्हां जे ॿुधाइण सां हाणे असां सम्झंदासीं त तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं तव्हां जॾहिं ॿुधंदव असांखे मैसेज मोकिलींदा रहंदो त तमामु तमामु तमामु सुठो लॻंदो।

ऐं साज़ वधंदासीं। पहिरियों ट्रैक तव्हांजे लाइ ऑन एयर कयूं था ऐं ॿुधायूं था तव्हांखे आवाज़ ऐं हिकिड़ो ट्रैक, ज़बरदस्त ट्रैक खां पोइ बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं असां सां गॾु गॾु।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
2: मातली आई आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
3: जी हा, 03135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक माझी सामाईन अबुधाबी GA FM 88 रेडिओ नेटवर्क GA FM 88 रेडिओ नेटवर्क जे GFM मातली बदीन के जॉइन कर चुका है जनी फ्रीक्वेंसी है 90.4 ऐं अवां जी खिदमत में हाजिर है अवां जो आरजी अवां जी मेज़बान अवां जो पेंजो यूनिस बकारी मुझे आवाज जगह अवा तई पहुंचे पयो ऐं यकीनन पहुंचन हूं तो बिल्कुल छाकाण जो अवां बुधंदा आयो रेगुलर ऐं जेकॾहिं मुझे आवाज पहुंचे पियो तो देर न कयो हिकिड़ो मैसेज करे छॾिजो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखिजो पंहिंजो नालो लिखिजो ऐं 888-188-81 असांजो नंबर आहे हुन ते मैसेज हाणे ई ॾियारे मोकिलियो

जी जनाब स्टूडियो इंजीनियर साथी आए शाहनवाज खास खेली तांजो तमाम घणी मेहरबानी शाहनवाज अवां जे इंतहाई घणी मेहनत जे करे मुझे आवाज हवा जे आधार पर अचे पे तमाम घणी मोहब्बतूं आहिनि ऐं तमाम ॿुधंदड़ भेनरूं ॿाहिरि वसंग ॿुधनि पिया तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी ऐं जनाब सॉन्ग्स बिल्कुलु मां प्ले कयां पियो ऐं तव्हांखे सॉन्ग्स ॿुधाईंदो हलंदुसि असांखे हाणे हाणे ज्वाइन कयो आहे हाजी सहतो साहब ॿुधे पियो ऐं शहबाज़ ख़ासि केली ॿुधे पियो भलीकार साले सोलंगी ताज मोहम्मद सहतो ॿुधे पियो अवां जो तमामु घणी महिरबानी आसिफ़ सहतो भलीकार चवंदासीं तव्हांखे असद सहतो जी हा गोठा हाजी सहतो तमामु घणी मोहबतूं अव्हांखे वेलकम चवंदासीं ऐं ब्रेक यकीन असां ब्रेक खां पोइ तव्हांखे भलीकार चयो आहे ऐं अव्हां बस सां गॾु गॾु हूंदो ऐं जेके अञा मैसेज ईंदा उहे मैसेज तव्हांजा बिल्कुलु शामिल थी वेंदा त पोइ लिखो MTI ऐं उन खां पोइ ॾियो स्पेस ऐं पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं जल्दी जल्दी सां असांखे सेंड कयो मैसेज त तव्हांजा मैसेजिस असां बिल्कुलु शामिल कंदासीं थैंक यू वेरी मच

ऐं ट्रैक प्ले कंदासीं, पर असांखे मैसेज चुको आहे परवेज सोलंगी साहब जो। वेलकम चवंदासीं तव्हांखे, ऐं अवां असांखे कबुलपुर खां ज्वाइन कयो आहे एहसान सोलंगी। तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो तमामु घणी मोहबतूं। आशिक सोलंगी, तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो कहिड़े क़ुर्ब में था माण्हू?

जी जनाब साथ ऐं आवाज़ जे साथ में पंहिंजो मोहबतुनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं असांखे ज्वाइन कयो आहे एम टी आई लिखी स्पेस ते गोट शहर लिखी मैसेज मोकिलियो आहे इस्लाम कोट खां ज्वाइन कयो आहे नाज़ निसार अहमद साहब नाज़ निसार अहमद अबड़ो साहब तमामु घणी मोहबतूं ऐं अवां सां शामिल आहे मोहम्मद करीम राजड़ अवां जी बि तमामु घणी मोहबतूं अवां खे बि चवंदासीं भलीकार थैंक यू जी भलीकार ख़ुशि हुजो आबाद हुजो जो तव्हां असां सां शामिल थी चुका आहियो जुड़ी चुका आहियो ऐं असांखे ॿुधे थो अली अकबर खोर साहब फौजी साजिद अली खोर साहब तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी ऐं अकबर साजिद अकबर ऐं माजिद अकबर तव्हांजी मोहबतूं भलीकार काफ़ी ज़माने खां पोइ तव्हां असांखे यादि कयो आहे ऐं वाजिद अकबर ॿुधे पियो तमामु घणी मोहबतूं तव्हां सभिनी जूं ऐं तव्हां सभई असांखे ॿुधो था ॻोठु अव्हांजो आहे उमर खोर जो थैंक यू भलीकार मीरपुर खां अव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी हा जनाब मीरपुर भठोरो खां तव्हां असांखे ॿुधो पिया यकीन ज़िले सिजावल खां ॿुधंदा हूंदव ऐं असीं तव्हांखे वेलकम था चऊं काफ़ी ज़माननि खां पोइ तव्हांजी यादगिरी तव्हां असांजो आवाज़ ॿुधो आहे तव्हांजूं महिरबानी भलीकार चवंदासीं तव्हांखे ट्रैक प्ले कंदासीं हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक आहे क्यू शीट में शामिल आहे उहो शामिल करे था वठूं ऐं ॿुधूं था ट्रैक बाक़ी ॻाल्हियूं पाण खे ब्रेक खां पोइ अवां सां करणियूं आहिनि ओके त पोइ ही ट्रैक तव्हांजे नाम कयूं था हिकिड़ो ब्रेक वठी था वठूं बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक खां पोइ बि कंदासीं खोड़ सारा मैसेजनि जेके शामिल करणा आहिनि ब्रेक खां पोइ ऐं तेसि ताईं असांजो इंतज़ार कजो ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त असां ॻाल्हियूं कंदासीं खोड़ सारियूं कुंडरी खां असांखे कासिम भील ॿुधे पियो लछवाणी ऐं राजा दिलीप कुमार ॿुधे पियो अवां लिखियो त सिक सां सलाम वालेकुम असलाम मोहबतूं अवां जूं अवां असांखे कासिम लछवाणी साहिब ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं थैंक यू सजण सांगीअ जी वांढ मां असांखे ज्वाइन कयो गुलाब गुल मिठी थरपारकर खां अवांजी तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾा सुहिणा साईं फौजी सुमर जो आवाज़ आहे मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ केॾे न मंच

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ सीने जी जलन खट्टियूं उगरायूं भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन तो हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद जिंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
7: सुनिए GFM रेडियो। मेटी रेडियो नेटवर्क के आवां है आवां जे पंजो यूनिस बकारी। जेकॾहिं तव्हां शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिलियो, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलियो। तव्हांजा मैसेज जीअं जीअं अचनि पिया शामिल कंदा हलंदासीं। असांखे ज्वाइन कयो आहे परवेज़ सोलंगी साहब, मोहबत तव्हांजो हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांजो असांखे मैसेज पहुतो आहे कबूलपुर खां। तमामु घणी महिरबानी, वॾा वॾ अव्हांजा जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। खुश हुजो, आबाद हुजो, तारनि में चंड खीर में खंड हुजो। मुनीब लगारी असांखे ॿुधे पियो, तव्हांजो बि तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं थैंक यू वेरी मच जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। ऐं जनाब ॾिसंदासीं त हाणे असां साण केर जुड़ी चुको आहे। ओके, मैसेज शामिल कंदा हलंदासीं त मैसेज पहुतो आहे, मैसेज पहुतो आहे ॻोठ सवाली डंगणू खां। असांखे ॿुधे थो अलहयार डंगणू, अवां जूं तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि। ऐं वापारी अली नवाज़ डंगणू ॿुधे पियो, ऐं ग़ुलाम रसूल अवां सां गॾु ॿुधे पियो। किरोड़े कृप तव्हांजा सुहिणा साईं, मिठा माण्हू अवां असांखे ॿुधो था। असीं अवां जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं जो तव्हां असांखे ॿुधो था। ऐं तव्हां सां गॾु आहे जी जनाब नंढड़ो अरसलान, तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं नंढड़ो मल्हार जी जनाब, तव्हांजो बि तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि, तव्हां असांखे ॿुधो था। मैसेज पहुतो आहे मोहम्मद अशफाक जो, ऐं अच्छा जी बल्कि मुश्ताक असांखे ॿुधे पियो, मुश्ताक लाशारी साहब, बाबू लाशारी साहब, अव्हांजी तमामु घणियूं महिरबानियूं। जामोट फार्म का तो असा ज्वाइन कन्दा आयो ए अज भी ज्वाइन कयो आहे असी अवांजा शुक्रगुजार आहियूं मोहब्बतूं वडा वड तवांजा जो तवां असा के ज्वाइन कयो आहे थैंक यू भलीकार चवंदासी तवां के जो तवां असा के बुधी रहया आयो ऐं जनाब असा के ज्वाइन कयो आहे तमाम घणे मोहब्बतुन सां मैसेज के जरिए जी हाँ जनाब असा के ज्वाइन कयो आहे मोहम्मद सलीम वाढो साहब काफी जमाने का पो याद कयो आहे ऐं सोहेल ऐं शोबान ऐं आज़ान अली वाढो तव्हांजो तमाम घणी मोहब्बतूं आहिनि तव्हां असांखे ॿुधो था ऐं अव्हां खे बि चवंदासीं भलीकार जो तव्हां अॼु शो में शामिल थिया आहियो अव्हांजो ॻोठ आहे ॻोठ इस्माइल वाढो खां तमामु घणी मोहब्बतूं आहिनि साईं असीं थैंक यू चवंदासीं तव्हांखे भलीकार चवंदासीं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो जी जनाब मुश्ताक लाशारी साहब एक दफो बेहर ज्वाइन कयो आहे बाबू लाशारी सां गॾिजी मिठा माण्हू किरोड़े कुरबे जामोट फार्म खां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे असीं अव्हांजा तमामु तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां असांखे यादि कयो आहे ऐं 8881 ते मैसेज मोकिलियो आहे जी जनाब मैसेज पहुतो आहे मोहम्मद अयूब लाशारी साहब जो बाबू लाशारी ॿुधे थो ऐं अव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी हा जनाब जामोट फार्म खां अव्हांजो मैसेज पहुतो आहे रीचल लिखियल आहे वधीक तमामु घणी मोहबतूं मां अव्हांजो थोराए थो आहियां ऐं मोहम्मद अयूब लाशारी साहब तव्हांजो ॿियो बि मैसेज पहुतो बाबू लाशारी सां गॾु जामोट फार्म खां किरोड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तारण में चंड खीर में खंडु हुजो हाजी सहत जे ॻोठ खां असांखे शहबाज़ खासकेली ॿुधे पियो हाजी सहतो ॿुधे पियो ऐं सालेह सोलंगी ॿुधे पियो ताज मोहम्मद सहतो ॿुधे थो आसिफ़ सहतो ॿुधे थो ऐं आसिफ़ सां गॾु ॿुधे पियो असद सहतो साहब थैंक यू वेरी मच ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं तव्हां लिखियो आहे त सलाम ॾियो शाहनवाज़ खासकेली खे जी शाहनवाज़ साहब बिल्कुलु तव्हांजा सलाम क़बूल कया आहिनि तव्हांजूं तमामु घणियूं मोहबतूं अव्हां खे चवंदासीं भलीकार ऐं जना मैसेज असां वटि पहुची चुको आहे जी जनाब डबल डबल बैकग्राउंड अची विया आहिनि सो ख़ैर तव्हांजा मैसेज असांखे रीड करे वठणा आहिनि हिन जे करे थोरो ईअं थींदो रहंदो आहे ऐं ट्रैक ॾियणो आहे असांखे ऐं जनाब हाजी सावण जे ॻोठ मीर ख़ान खोसो खां असांखे ॿुधे पियो हुसैन अली खोसो हसन अली खोसो ऐं असद अली खोसो अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं जनाब मैसेज पहुतो आहे शहर गुलाब लगारी खां जी जनाब ॻोठ आहे बशाम खान रिंद खां ओके बशाम खान रिंद जो ॻोठु आहे उतां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी हा जनाब उतां असांखे ज्वाइन कयो आहे शायर गाज़ी खान रिंद साहब ऐं रिज़वान अली रिंद साहब ॿुधे थो अवांजी महिरबानी ऐं फैज़ान अली रिंद साहब ॿुधे पियो तमामु घणी मोहबतूं मिठा माण्हू शायर गाज़ी खान तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु कयो चङा भला मातारा जोड़ उमीद आहे त ख़ुशबाश हूंदव ठीकु ठाक हूंदव ऐं शहज़ाद अली रिंद बि तव्हां सां गॾिजी ॿुधे पियो ऐं नंढड़ी कोमल ज़ोरा ओके जी कोमल ज़ोरा ॿुधे पई तव्हांजो बि तमामु घणियूं महिरबानी मूंखे शो वणे थो पसंदि अचे थो मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां थैंक यू ऐं भलीकार चवंदासीं थैंक यू वॾा वॾा

ਉਠੇ ਸੋਹਰਾਬ ਖਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਕੇ ਮੋਹਬਤੀ ਮੰਗਣ ਖਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ मोहबती मंगण निजामणी साहब अवे तमाम घणी महरबानी आहिनि वॾा वॾ तव्हांजा तव्हां सां शामिल थी चुका आहियो ऐं नंढड़ो अहसान बि तव्हां सां गॾु ॿुधंदो हूंदो पक सां हाफिज़ मोहम्मद निज़ामाणी साहब बि ॿुधंदो हूंदो तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजूं ऐं तव्हां लिखियो आहे त असांखे ॿुधायो ओके रहमान मुगल ॿुधायो ओके साईं कोशिश कंदासीं ॿुधाईंदासीं तव्हांखे तव्हांजूं तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं ऐं जुग जुग जीओ वॾा वॾ अवां जा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो थैंक यू भली कार चवंदासीं अवां खे।

मोहम्मद अशरफ अहमदाणी साहब चए तो असांखे अनवर हुसैन विस्तड़ो साहब जो आवाज़ ॿुध रहियो ऐं ॻोठु आहे अव्हांजो मोहम्मद अली अहमदाणी। मिठा माण्हू किरणे कुर्बे काफ़ी ज़माने खां पोइ अव्हांजो मैसेज पहुतो आहे, ॾाढी ख़ुशी थी। कोशिशि कंदासीं जानीबा तव्हांखे ज़रूरु तव्हांजी पसंदि जो गानो ॿुधाईंदासीं इनशाला, ऐं थोरो इंतज़ार करणो पवंदो तव्हांखे, इनशाला तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उमीद आहे तव्हां असां गॾु गॾु रहंदो, ऐं जेके जेके महिरबान भेनरूं ॿाहिरि असांखे ॿुधनि पिया सभिनी खे वेलकम चवंदासीं। मिठी थरपारकर खां असांखे हिजाबुद्दीन जूणे जो लिखे थो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अदा हिजाबुद्दीन। ऐं जनाब मुनीर असांखे ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी मुनीर, लख तौर तव्हांजा। ऐं मुनीर साहब असांखे यादि कयो आहे, तमामु घणी महिरबानी। सो जनाब ॾिसंदासीं त साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में असां सां गॾु केरु आहे। ऐं जी जनाब यकीन थोरी देरि में ई असां न्यूज़ ब्रेक था वधंदासीं, पर न्यूज़ ब्रेक में अञा कुझु मिंट आहिनि, चार मिंट खां आहिनि। तेसि ताईं असां ॾिसंदासीं को ट्रैक क्यू शीट में असांजे इंजीनियर साथी शामिल कयो हूंदो त ट्रैक हिकिड़ो प्ले करे था वठूं तव्हांजे लाइ। बिल्कुलु क्यू शीट में शामिल आहे शेर गुलमंडा खां प्यार अली गाबार, रज़ा मोहम्मद गाबार। ऐं अव्हां लिखे त को यादि कंदे ई विसरी वियो, को विसरी विसरी यादि रहियो, को प्यार ॾींदे विसरी वियो, को दर्द ॾींदे ई यादि रहियो, बस यादि अची माज़ी वियो, वक़्तु हो को गुज़री वियो। उस्ताद जूं सिटूं लख थोरा तव्हांजा साईं। जी जी ज़रीना बलोच जो आवाज़ आहे, जहिड़ी तुंहिंजी ॿोली आहे तहिड़ी मुंहिंजी लात किथे, अमीन अरबाब जी शायरी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-200। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक मजी सामाइन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क का मसान व खातिबा है। यकीनन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जे स्टूडियो है जी एफ एम 90.4 मातली जिते जिते बस जो ही आवाज थरन बरन में गोठन में वायणन में बस्तन में गुंजे पे असी अवा के चंदासी वलीकार है अवा जो आरजे अवा सब खातिबा है यूनुस बकारी। सो जनाब अवां जा कुछ मैसेजेस अची चुका आहिनि जेके शामिल कंदा हलंदासीं ऐं यकीनन अवां जा मैसेजेस हिन शो जो सिंगार आहिनि। सो असां कोशिश कंदासीं

जो आई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यो मैसेज मोकलो है गोठ जीवन खान खासकेली का यो गोठ है जी जनाब घड़ो बंगलो जी वेझो उतां का असाके याद कयो है मोहम्मद असलम खासकेली साहब अवां जी तमाम घणी मोहब्बतूं आहिनि ऐं नंढड़ो ज़मीर तां सां गॾु ॿधे पियो किरोड़े कुर्ब तव्हां जा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं नंढड़ो ज़मीर खासकेली सां गॾु आहे मोहम्मद हसन अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानी उर्फ़ अबली खासकेली थैंक यू जी मुनवर अली खासकेली बि तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब तव्हां जा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तारण में चंड खीर में खंडु हुजो ऐं जनाब असां साण जुड़ी चुका आहिनि जी हा ॾिसंदासीं केरु जुड़ी चुका आहिनि मैसेज जेको आहे शहर गुलाब लगारी खां हिकु दफ़ो ॿीहर ॻोठु आहे बशाम ख़ान रिंद खां जी हा उतां खां असांखे असांजो प्यारो शाइर दोस्त ॿुधंदो आहे ऐं शाइर असांखे ॿुधे थो गाज़ी ख़ान रिंद अवां जी तमामु घणी महिरबानी गाज़ी ख़ान रिंद रिज़वान अली रिंद अवां जी महिरबानी ऐं हमीद अंसारी इहो सॉन्ग तव्हां ॿुधणु चाहियो था बिल्कुलु कोशिशि कंदासीं सोना साईं ज़रूरु पर इंतज़ारु करणो पवंदो तव्हांखे हाज़ुर हाज़ुर बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं तव्हांखे मोहबतूं तव्हांजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड हुजो खीर में खंडु हुजो ऐं मेवनि में अंबु हुजो जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं जनाब मैसेज पहुतो आहे ॻोठु हाजी मिहार खासकेली खां जी जनाब हाजी मिहार खासकेली जे ॻोठ मां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी जनाब नालो लिखियल ई कोन्हे ओके जी हाजी मिहार ख़ान जे ॻोठ खां असांखे यादि कयो हूंदो यकीन रब नवास ॿुधंदो हूंदो भलीकार चवंदासीं तव्हांखे ऐं तव्हां सां गॾु मासात ॿुधंदो हूंदो सजाद भलीकार ऐं ॿियो मैसेज पहुतो आहे हाजी मिहार लगारी खां हाजी मिहार ख़ान लगारी जे ॻोठ मां असांखे नियर आहे अंसारी मिल उतां खां असांखे ज्वाइन कंदड़ जेके महिरबान आहिनि उन्हनि यादि कयो पहिरीं उन्हनि जा तव्हांखे नाला ॿुधाए वेठा जी हा जनाब उतां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे हाजी ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब अवां जी तमामु घणी महिरबानी हाजी साहब मोहबतूं तव्हांजूं ऐं अवां सां शामिल आहे हे मौला बख़्श लगारी अवां जा बि किरोड़े किरोब मौला बख़्श लगारी भाउ ऐं हाजी ग़ुलाम हुसैन भाउ अवां जूं तमामु घणी मोहबतूं आहिनि तव्हां असांखे ॿुधंदा आहियो ऐं यकीन तव्हां असांखे ज्वाइन कंदा आहियो।

अंसारी शुगर मिल्क खां जी जनाब वो मैसेज बि असांजे तमामु मानाइतनि ॿुधंदड़नि मोकिलियो आहे। हाजी गुलाम हुसैन लगारी साहब मोहबतूं तव्हांजूं ऐं मास्टर मौला बख्श लगारी ॿुधे पियो अवांजो बि तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾा अवांजा तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं अवांजी मोहबतुनि जा असीं कर्ज़ी थियासीं ऐं जनाब उन सां गॾो गॾु असांखे सदर अली लगारी साहब बि ॿुधे पियो ऐं अज़हर अली लगारी किरोड़े कुर्ब साईं हम सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी वालेकुम असलाम एंड तमाम अवांजे ॻोठाणनि जा सलाम सताई पहुता असीं बि अवांखे दिलि जे गहराइनि सां भली कनि था चऊं। ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में मूंखे ब्रेक वठणो आहे। हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक आहे जेको ॿुधंदासीं पाण गॾिजी ऐं इहो ट्रैक ॿुधण खां पोइ मां वापसि अचणो आहियां। इमरान अली ख़ासकेली साहिब जॉइन कयो। इमरान अवांजी बि तमामु घणी महिरबानी भलीकार ऐं झिरक शहर खां शहबाज़ जमारी कुदुस जान जमारी ऐं बाबा साईं शेर मोहम्मद जमारी ॿुधनि पिया। अवां झिरक में ॿुधो पिया असीं अवां जा थोराइता आहियूं साईं किरोड़े कुर्ब तमामु घणी मोहबतूं जो अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं अॼु रेडियो लॻायो आहे तव्हांजो आवाज़ ॿुधां पियो। अच्छा थैंक यू मिठा माण्हू पर पंहिंजो नालो लिखण अच्छा जी पंहिंजी फैमिली समेत ॿुधो पिया तमामु घणी महिरबानी। हिन मैसेज में शायदि तव्हां पंहिंजो नालो लिखणु विसारे छॾियो आहे। मां सर्च कंदुसि त इहो असल मैसेज कंहिंजो हूंदो। हीउ ट्रैक अव्हांजे नाम कयो त बाक़ी ॻाल्हियूं

मुलाका अख्तियार का असांखे ॿुधे थो इमरान अली खासकेली साहब, तमामु घणी महिरबानी। तव्हां चयो त असां हिन महिल कराची में सियाल कॉलोनी में तव्हांखे ॿुधूं पिया मातली खे लाइव। अच्छा जी, वॾी ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ त वाह वाह।

ओट खजूरड़े का असा बुधन था रब डिनो नोहड़ियो साहब दादू नोहड़ी जुल्फकार नोहड़ी अवजी चूंड है नजर नजर में तू आही शहर शहर में तू आही जित भी वना तो नंगर नंगर में तू आही तमाम घड़ी मेहरबानी भलीकार चवंदा से मिठा मानू वहां के वेलकम मोहम्मद अशरफ अहमदानी साहब चाहिए था SMS का हाँ तिखे तो मुझे SMS मुकमल पढ़ा कर अजी रेडियो वी आया हुआ तक लख लख मुबारक हुजन मिठाई विरा तो खैर खैरियत से यो रेडियो तमाम घणो साथ दे मैसेज पूरा पढ़ण मुझे वस में ना हों पर शायद मैसेज में तुम उन लिखो मैसेज एतो मुख्तसर लिखंद ओतो अस पढ़ी सकंदी छो तो हर एक मैसेज से टाइम तमाम घणो वेस्ट थन्द वेंदो तो अस कोशिश कन्दा आयो तो सिंपल जो पढ़ने जड़ी गाल हुए पर तीन लिखो हो तो पैं फैमिली से बुधा तो तमाम घनी खुशी की गाल है असो भेनरू असो मायरू असो न्याणियों अस बुधन्दन हि घर फैमिली रेडियो आ फैमिली रेडियो में जी यही गाल हूँ तो उनके हर घर जो फर्द बुधन्द अस खुशी जड़ी गाल तवाजो थोराए तो आया दरगाह पिथोरो का असंगे बुधी रो है अरबाब शर साहब मोमिन शर साकिब शर लुटको मोरी खां असांखे अब्दुरहमान लगारी ज्वाइन कयो मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी मिठा माण्हू भलीकार शहर सीराणी खां भा पोड़ो मल्हा असगर अली मल्हा ऐं मुकद्दर अली मल्हा ॿुधनि था अवां चयो त लाजवाब कंपेयरिंग ऐं ज़बरदस्त अंदाज़ अच्छा जी इहा तारीफ़ तव्हां लिखी आहे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं मां तव्हांजो थोराए थो आहियां तारीफ़ हर कंहिंखे वणंदी आहे पर थोरो असांजी हौसला अफ़ज़ाई लाइ असांखे ॿुधाइजो त अञा हिन में प्रोग्रामनि में बहितरियूं कहिड़ियूं आणियूं ऐं जेके मुंहिंजा रेग्यूलर शोज़ आहिनि कुझु नेटवर्क जा शोज़ आहिनि उहे बि सूमर ऐं अंगारे ते हूंदा आहिनि शाम जो 5 खां 7 वॻे ताईं ऐं असांजा ओवरऑल तमामु सुठा नेटवर्किंग जा प्रोग्रामनि में असांखे असांजा भेनरो भाइर ॿुधनि प्रोग्राम खे वधीक तवजो सां ॿुधनि वधीक अञा असां प्रोग्रामनि खे बहितर करणु चाहियूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक वठणो आहे शॉर्ट ब्रेक हूंदो मां बिना ब्रेक वापसि ईंदुसि छो त प्रोग्राम आहे जारी हो सारी हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवां पंहिंजो यूनुस बकारी केॾे न वञो

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: वेलकम बैक मुझे सामेन GAFM 88 रेडियो नेटवर्क का मसण खाते बहे साज़े आवाज़े साथ में प्यारे पंजाए पजा खूबसूरत रंग रात यो पहर रहे अवां तई असां जो मुसाफिर आवाज शो आहे रस भरी रहण जेको अवां जो अंदाज आहे मोहब्बतुनि जो उन में अवां जो आरजे अॼु शामिल आहे यूनुस बकारी। सो मौजूद सामेन शामिल करे वठंदासीं अवां जा प्यार भरिया मोहब्बती मैसेज जेके अवां मोकिलिया आहिनि जुड़बी खां वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच असांखे ॿुधे पियो। वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच साहब तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच, बिलावल बलोच, असगर ऐं नंढड़ो शहज़ाद अहमद बलोच अवां लिखियो आहे सलाम साईं। वालेकुम असलाम, तमामु घणियूं महिरबानियूं। रब ॾिनो नोहड़ी ॿुधे थो खजूर।

रेडे खां ऐं दादू नोहड़ी अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं यकीन साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अवां जो हिकु दफ़ो ॿीहर साथ तमामु घणियूं मुहबतूं अवां खे बि चवंदासीं भली कार ख़ुश आमदीद थैंक यू वेलकम ऐं ॻोठ नोटो खां थरपारकर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे रामचंद कुमार कोहली गोविंद गुल कोहली ऐं कमलेश कुमार कोहली अवां जी महिरबानियूं ऐं तव्हांखे प्रोग्राम सुठो लॻे थो मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां किरोड़े कुर्ब तव्हांजा जो तव्हां असांजे अॼोके हिन बज़ में शामिल थिया आहियो तमामु घणियूं मुहबतूं ऐं जनाब असांखे ज्वाइन करे चुका आहिनि जेके जेके भेनरूं भाइर उन्हनि जा अञा बि मैसेज तेज़ी सां अचनि पिया शामिल कंदा हलंदासीं ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे कुझु मैसेजनि में जी जनाब हाजी मिहार ख़ान लगारी ॻोठ खां टियों मैसेज पहुतो आहे जी नियर आहे अंसारी शुगर मिल मातली तमामु घणी महिरबानी जी तव्हां असांखे यादि कयो आहे इन ॻोठ मां ऐं थैंक यू असांखे ॿुधे पियो मास्टर मौलाबख्श लगारी साहब तमामु घणी मुहबतूं तव्हांजूं मास्टर मौलाबख्श लगारी साहब टेलर मास्टर ऐं अज़हर अली लगारी साहब हाजी गुलाम हुसैन लगारी साहब अवां जूं तमामु घणी महिरबानी ऐं हमारा सलाम ओके जी वालेकुम असलाम तव्हां लिखियो त सलाम अच्छा भाउ हिकिड़ो अर्ज़ु कयूं त मैसेज सॼो शामिलु करणु असांजे टाइम जो हूंदो आहे असां स्पेशल उहा ॻाल्हि पढ़ंदासीं जंहिंमें नालो ॻोठ वग़ैरह हुजे या का सुठी शायरी वग़ैरह हुजे सलामनि कलामनि जे लाइ हाणे फोननि जा पैकेज बि सस्ता आहिनि माण्हू करे सघे थो मैसेज करे सघे थो पर हीउ रेडियो आहे हर घर में ॿुधूं पिया दुनिया ॿुधे पई त उन लाइ सुठो मवादु सुठी ॻाल्हि हूंदी का सुठी ॻाल्हि लिखंदो त उहा शामिल थींदी बाक़ी तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि सॼो मैसेज शामिल करणु वस जी ॻाल्हि नाहे हूंदी ओके जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे बेवस रामू असांखे ॿुधे थो ऐं बेवस रामू भील नज़ीर ॿुधे पियो अवांजी तमामु घणी महिरबानी वज़ीर ॿुधे पियो थैंक्यू मिठा माण्हू ऐं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे शबीर ॿुधे पियो ऐं तव्हां असांखे ॿुधो पिया नई दुंबाले खां किरोड़े कुर्ब बेवस काफ़ी ज़माने खां पोइ जॾहिं अवांजो मैसेज पहुतो त ॾाढी ख़ुशी थी तमामु घणी महिरबानी ऐं जनाब छोरे टियाणी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं विथ पप्पा जान इहो मैसेज मोकिलियो आहे जी जनाब भारूमल अवांजी तमामु घणी महिरबानी भारूमल मातली शहर खां ऐं थैंक यू मां शायदि सही समझ में जी मैसेज आयो आहे ओके जनाब अलीकार चवंदासीं ओके तव्हां लिखियो त रब नवाज़ ऐं शाह नवाज़ ख़ासि करे लिखी सलाम ॾियो शाह नवाज़ साहब बिल्कुलु ख़ुशि पियो थिए तव्हांजा सलाम ऐं जनाब विशाल ॿुधे पियो विशाल तव्हांजा सलाम पहुची वियो ओके विशाल तव्हां पंहिंजे वालिद साहब सां गॾु ई ॿुधो था ओके जनाब ऐं मूंखे ब्रेक वठिणो आहे पर ब्रेक खां पहिरीं कुझु मैसेज आहिनि जेके शामिल करे वठनि तकिड़ा छो त गानो हली चुको आहे मैसेज में गाना बि तमामु घणा आहिनि ऐं गुलहसन ख़ासकेली जे ॻोठ खां असांखे ॿुधनि था जी जनाब ॿुधनि पिया इलाही बख़्श ख़ासकेली साहब अच्छा जी इलाही बख़्श तमामु घणी महिरबानी तव्हांजूं वॾा वॾ तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं अवां सां शामिल आहे बाबर अली तमामु घणी मुहबतूं बाबर ख़ासकेली तव्हां बि असांखे ॿुधो पिया ऐं ॻोठ आहे सोहराब ख़ान निज़ामाणी उतां खां मुहबती मंगण निज़ामाणी ॿुधे पियो नंढड़ो अहसान निज़ामाणी ऐं हाफ़िज़ मोहम्मद निज़ामाणी साहब किरोड़े कुर्ब मिठनि माण्हुनि जा जेके असांखे ॿुधनि था तमामु तमामु घणी महिरबानी ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं जनाब ब्रेक में थोरो टाइम बचियो आहे त मां ब्रेक वठी वठां छो त ब्रेक इन ताईं लाज़मी आहे कंहिं गाॾी जो ब्रेक न लॻंदो आहे त पोइ छा थींदो आहे पोइ गाॾी कल्टी उनखां बहितर आहे जो मां बिल्कुलु ख़ामोश थी वञा मूंखे हिकिड़ो गानो ॿुधाए वठां बाक़ी ॻाल्हियूं पाण कंदासीं ब्रेक खां अनवर विस्तरो साहब जे आवाज़ खे ॿुधी वठूं

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बीज इन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेस और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर

0: آس پاس جی عوام لائے خوشخبری मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244।
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
1: जी हा, 03135257786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: वेलकम बैक वज़ी सामईन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GFM मातली 90.4 सुवारी सिंध के मुलुक मिटी से तमाम मौजिज बुधंदड़ जे भेनरों भाई सभी के एक दफो बीहर सिक भर सलाम अवज यूनिस बकारी अवसा मुखातिब है ठीक 9 वगे तई। सो जनाब

मोहबती मैसेज जेके आहिनि उहे पहुचनि पिया, शामिल कयूं पिया ऐं सभिनी भेनरुनि भाइरनि जी महिरबानी आहिनि जेके असांखे यादि कनि पिया। असांखे हिन महिल ज्वाइन करे चुका आहिनि नोट थर पार्कर खां नंढड़ी रवीना कुमारी ऐं रजीना कुमारी, अवां जी तमामु घणी महिरबानी, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे। ऐं जुड़बी खां वफ़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच ऐं बिलावल बलोच जो मैसेज पहुतो आहे, अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो।

जीवन सामिन जे करे अवां जो कि शो जो हिस्सो थियण चाहियो था त देर न करियो, बिना देर जे लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। अवां जे प्यारा प्यारा मैसेज ज़रूर शामिल कंदासीं, ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो। बेवस रामू भील असांखे ज्वाइन करे थो नए दुम्बाले खां। अवां सां शामिल नज़ीर, वज़ीर ऐं शबीर, तव्हांजूं तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां असांखे ॿुधंदा आहियो ऐं यकीन नए दुम्बाले खां अॼु अवां हीउ ॿियो मैसेज मोकिलियो आहे। अवां जूं मोहबतूं ऐं किरोड़े कुर्ब तव्हांजा जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। अलाह साईं करे शाद ऐं आबाद हुजो, सदाई सुखिया हुजो, शाल अवांजी मुर्क मेरी न थिए, मोहबतूं मिठा माण्हू। ऐं ज्वाइन कयो आहे जी जनाब हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे खोड़ सारा मैसेज जेके आहिनि उहे अची रहिया आहिनि। ऐं डीपलो जे ॻोठ झपियो खां मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो ॿुधे पियो। रोशन अली पाढ़ो लिखनि था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असांखे झपियो खां ॿुधो पिया ऐं अवीब हुजो, ख़ुशि आबाद हुजो, थैंक यू। ऐं थरपार करे ॻोठ गुंगियो खां असांखे अब्दुल जबार नोहड़ियो ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी अब्दुल जबार नोहड़ियो साहिब, तव्हां असांखे ॿुधो था गुंगियो खां, थैंक यू, भलीकार। ऐं जनाब ॻोठ जी जनाब ॾिसंदासीं अपडेट थिए पियो पेज, कुझु मैसेजनि जेके अपडेट थियनि था उन्हनि खे शामिल कंदा हलंदासीं। ऐं असगर असांखे ॿुधे पियो जुड़बी खां, ऐं नंढड़ो शहज़ाद बलोच ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी अवां जूं। अवीं सदाई सुखिया हुजो, अवां जे लाइ खोड़ सारियूं दुआऊं ऐं सदाई सुखिया हुजो। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में ऐं मौज़ूस ख़वातीन हज़रात, अवां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे। समद अशरफ अहमदाणी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं सागर अशरफ ऐं साहिल अशरफ ॿुधनि पिया, अवांजी महिरबानी। ऐं सारंग अशरफ लिखियो आहे, अंकल यूनिस आपका शो सुन रहे हैं, सलाम आपको अंकल। वालेकुम असलाम प्यारा बारो, तव्हां जूं महिरबानियूं, तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं राति हिन पहर में तव्हां पंहिंजे शो खे ॿुधो पिया, पंहिंजे बाबा सां गॾु, पंहिंजी फैमिली सां गॾु, तमामु घणी ख़ुशी थी, सदाई सुखिया हुजो ऐं शाल अवांजी मंज़िल अवांजे लाइ आसान थिए। अवां जेको चाहियो था, अवांजे वालदेन चाहिनि था, पढ़ी लिखी पंहिंजे वॾनि जो नालो रोशन कजो। इमरान अली ख़ासि के लिए मुलाक़ात तयार खां असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर यादि कयो आहे, चवे थो दादा यूनिस तव्हां असांजो मैसेज पढ़ो ऐं फरमाइश बि पूरी करियो, पोइ वाह चरी तुंहिंजे सबर खे सलाम आहे। मिठा माण्हू कोशिश कंदासीं, हाणे त फरमाइश जो वक़्तु तमामु घटि बचियो आहे, पर जे बचियो मिलियो टाइम त ज़रूर। मोमिन शर पिथौरो खां ॿुधे पियो, तमामु घणी महिरबानी मोमिन शर साहब, अवां असांखे पिथौरो खां ज्वाइन कयो।

फाइज़ अली जो आवाज़ गॾु ॿुधी था वठूं ऐं हिन ॾाढो ब्रेक वठंदासीं, जंहिंखां पोइ वापसि ईंदासीं। बाक़ी असांजो अव्हांजो साथ 15-20 मिंटनि जो आहे, उन साथ में साथ ॾींदव न? पक सां ॾींदव त पोइ बसि जल्दी सां लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88-81 ते मैसेज मोकिले छॾियो। प्रोग्राम है जारी उसारी, नंढड़े ब्रेक का वापिस इंदो अवां जो पेंजो यूनिस बकारी।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
7: मणी नंढड़ो एहसान निज़ामाणी ऐं हाफिज़ मोहम्मद निज़ामाणी साहब यकीन इन ॻोठ जा आहिनि ऐं असांजी सॼी सिंध जा उहे महबूब शाइर आहिनि जंहिं ते सिंध नाज़ करे थी हाफिज़ निज़ामाणी साहब तमामु उहा शाइरी कई आहे जंहिं ते सॼी सिंध खे नाज़ आहे ऐं हाफिज़ साहब हिकिड़ो जेके मुआशरती मसलनि जे हवाले सां त खोड़ सारी शाइरी आहे पर हिकिड़ो शेर जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे इंताही शानदार आहे उहो इहो आहे त नारियल जहिड़ी नारी हुई ऐं काठ जहिड़ो घोट हो जेकी बेजोड़ शादी आहे न हुन जे लाइ तशबीह ॾाढी ख़ूबसूरत आहे त नारियल जहिड़ी नारी हुई ऐं काठ जहिड़ो घोट हो हूअ वेचारी छा करे जो सॻो संदसि सोट हो हा जो सॻो संदसि सोट हो ऐं जनाब ॾिसंदासीं त मैसेजनि में मैसेज अपडेट थियनि पिया अञा केरु केरु आहे जेको असांखे यादि करे थो मोहबती मंगण निज़ामाणी साहिब जा मैसेज त बार बार अचनि पिया तमामु घणी महिरबानी मोहबती भलीकार चवंदासीं तव्हांखे तव्हां वाकई मोहबती तखलुस रखी ऐं तमामु घणी मोहबत कई आहे ऐं रामू भील असांखे ॿुधे थो नए दुम्बाले खां नज़ीर वज़ीर शबीर सां गॾु अवां जो बि टियों चोथों मैसेज आहे मां तव्हांजो बि शुक्रगुज़ार आहियां तमामु घणियूं महिरबानियूं आहिनि तव्हांजूं जो तव्हां असांखे जॉइन कयो मोहबतूं भलीकार चवंदासीं छो त आख़िरी लम्हा ते मां तेज़ी सां मैसेज शामिल पियो कयां ऐं ॻोठ पोजातो पार खां असांखे जॉइन कयो आहे जी जनाब खेराज ॿुधे पियो खेराज ऐं दिलीप ऐं आनंद कुमार ऐं मेहताब अवां जी तमामु घणी महिरबानी भलीकार ऐं जनाब बुखारी नगर खां असांखे ग़ुलाम जॉइन कयो आहे जी जनाब ग़ुलाम नबी साहब अवांजी तमामु घणी महिरबानी ग़ुलाम नबी ज़ंगे जो साहब बुखारी नगर खां यादि कयो आहे बुखारी नगर मीन्स टंडो बागो तलहार रोड ते शायदि मुंहिंजे ख़्याल में ऐं जेकॾहिं मां न आहियां भुलियो त तव्हां उतां खां यादि कयो हूंदो छो त अग में भी खोड़ सारा मैसेज इंदा हुआ जनाब असा के मैसेज मोकलो है डिसंदी कें ओके जनाब मैसेज मोकलो है दरगाह है ओके दरगाह मलाह मैसेज लिखो है लिखल है दरगाह जो है वो है मंदर पीर का शायद ये लिखल है सॉरी अखर सब गडियल अब्दुल अजीज असा के बुधे पे मलाह साहब अब्दुल अजीज मलाह साहब वड़ वड़ तहां जा तहां जिते बुझो खुश हो आबाद हो गुलसन मलाह बुधे पे सागे ही गोठ का शेर अली अवां जो तमाम घणी मेहरबानी जो तमाम असा के बुधो था अवां असा के ज्वाइन कयो आहे कराची ओके जी रफीक थैंक यू जी मां अवां जो थोरा आयो आहियां थैंक यू भली कार चवंदासीं ओके हिकिड़ो मैसेज मोकिलियो आहे बल्कि उन में सलाम लिखियल आहिनि उहो मैसेज मोकिलियो गुलाम शबीर थैंक यू वेरी मच गुलाम शबीर अवां असांखे ॿुधो पिया वॾा वॾा अवां जा असांखे ज्वाइन छा बल्कि हीउ सॼो सारो प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाईंदड़ मुंहिंजो साथी इंजीनियर जेको आहे उन जो नालो वठण बि असांजी मजबूरी आहे छो त न नालो वठंदासीं न त हू रुसी पवंदो त मुंहिंजो आवाज़ अजीब क़िस्म तव्हां ताईं पहुचाईंदो शाहनवाज़ ख़ासि कली साहब ताईं ॿुधे थो अच्छा महिरबानी तव्हांजो

ओके जनाब, साजे आवाज के साथ हमें एक शॉर्ट ब्रेक का है, पर म्यूजिकल ब्रेक का। अब्दुल जब्बार नोएडा साहब गूंगी और थर पारकर का बजे भली का।

ऐं अबन जो तड़ थरपारकर खां असां ॿुधे पियो ग़ुलाम हैदर जूणे जो साहिब ऐं वफ़ा मोहबत अली जूणे जगी जो तड़ खां रमेश कुमार ऐं हरेश कुमार ऐं केवल कुमार ऐं मुकेश कुमार यादि कयो अवां जो बि तमामु घणी महिरबानी थरपारकर भोरियन भेटनि खां

ऐं गुलज़ार ख़ासि कैली, मोहम्मद ख़ासि कैली, उस्मान ख़ासि कैली, आरब मल्हा, अता मोहम्मद मल्हा ऐं कराची सियाल कॉलोनी में वेही ॿुधो पिया। तमामु घणी मोहबतूं साईं, अवां चयो जलाल चांडियो ॿुधाइजो, पर मूं वटि वक़्तु घटि आहे। मां कोशिशि कंदुसि त जेका क्यू शीट में गानो आहे उहो उर्स चांडियो जो आहे, उहो तव्हांजे लाइ प्ले करे पियो हलियो वञे। ठीकु आहे, टाइम तमामु घटि आहे, इन करे मां थोरा थोरा गाना प्ले कंदुसि ऐं मोकिलाइणो पए।

हाजी गुलहसन खासकेली साहब मोहबत हाँ गोठ का असा के ज्वाइन कर हाजी गुलहसन खासकेली साहब के गोठ में इलाही बख्श खासकेली इलाही बख्श खासकेली साहब अवजो मोहबत प्यार है पेंजाए बजाए एहसास पत आखरे लम्हा ताई यो साथ बाबर अली खासकेली साहब तहां जो मोहबत अवां जाब वडा वड अवां सा के ज्वाइन क

जी जनाब वाह चेरी दिलड़ी तुझे सबर के सलाम है अवां जे सबर के सलाम जो तामु के कयो बर्दाश्त है सी ताई उनखा आगे जो तमा बेजार थी पओ ए ता चो तो ही हलियो वने मां वणण चाया तो पर अमा बुधायो अजो कुछो की लगो

जी जनाब, त पोइ अवांजी सबर खे सलाम पेश कंदे अवांजी यूनुस बकारी वञे थो हिकड़ो गानो अहिड़ो प्ले करे जो खबरूं ॿुधण लाइ जॾहिं पाण असांजे सेंट्रल स्टूडियोज खे ज्वाइन कंदासीं खबरूं ताज़ा तरीन ॿुधण जे लाइ। तंहिंखां पहिरीं उर्स चांडियो जी सदा ॿुधी वठो।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान में 10 हंधन ते फजाई ए ड्रोन हमला पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल थाक ए ड्रोन जा जखीरा तबाह असद समा वारे फाकी वजीर अताउल्ला तारण चयो आहे त पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई आहे पाकिस्तान ते हमले लाए इस्तेमाल थियल ड्रोन लॉन्चर्स ए जखीरन के कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो वियो आहे।

अमरीका जे दौरे ते पहुतल चीनी सदर शी जिनपिंग जी व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। आलमी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ़ मामलन ते ख्यालन जी डे वठ अमरीकी सदर चयो आहे त खेस अमरीका ए चीन जे लागापन ते फख्र आहे। हुन चीनी सदर सां इंतिहाई शानदार दोस्ती कायम करे वरती आहे। मुलाकात दौरान बिन्ही मुल्कनि जे मसलनि ते ज़बरदस्त गभराई थी। चीन सां वापारी लागापा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां न्यूयॉर्क में ईरानी सदर मसूद पेशकियान जी मुलाकात बितरफ़न लागापन ऐं खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मुलाकात दौरान नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी ऐं ॿिया बि मौजूद। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अमरीका ईरान तकरार ख़तम करण लाइ पुरउमीद आहियूं। खिते में अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। समूरो ध्यानु ईरान अमरीका जंग जे ख़ात्मे ते आहे।

शर्त पूरा थियण ताईं नाबना हलबुस खुलंदो नई ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरान जो वाज़ ऐलान, सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार यहया रहीम सफ़ी चयो आहे त अमरीका या इसराइल ॿीहर हमिलो कयो त जंग हिंदी समुंड ताईं पखिड़जी वेंदी। माशी पाबंदियुनि ईरान खे तबाह करे छॾियो आहे, वधीक पाबंदियूं बि तेहरान खे ख़तम करे छॾींदियूं। अमरीका जे नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बीसेंट चयो आहे त ईरानी जहाज़नि जूं आलमी उॾामूं ख़तम थी वियूं आहिनि। हाणे को बि

ईरानी जहाजनि खे लैंडिंग करण न ॾेई रहियो आहे। पाबंदियुनि जो मक़सदु ईरान में बग़ावत पैदा करणु आहे। यमनी हुसियनि जे सऊदी शहर ताइफ ऐं यम्बा ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसियन पारां फायर कयल 6 बैलिस्टिक मिसाइल फिज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मूजिब यमन मां हुसियन पारां फायर कयल 6 मिसाइल जी निशानदेही ते खेन फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अल मालकी चयो आहे त मिसाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान न थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसियन जे हमलनि सबब मुतासिर थियल तेल पाइप लाइन जी मरम्मत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीका खां लागू पाबंदियूं फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। फलस्तीनी सदर चयो आहे त इसराइल फलस्तीन जे अवाम जी नसल कुशी करे रहियो आहे। हमला अञा ताईं जारी आहिनि। फलस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती बेदख़ली ऐं नसल कुशी वारी जंग शदीद थींदी पई वञे। वालारियल ओलन जे किनारे में गैर कानूनी कब्ज़ो वधायो पियो वञे। गज़ा जो अवाम कतले आम तबाही ऐं बुख खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। फलस्तीन खे जनरल असेंबली इजलास में शिरकत खां रोकणु क़बूल करण जोॻो नाहे। गज़ा जूं हालतूं संगीन आहिनि। फलस्तीनी अवाम ते बमबारी ऐं नसल कुशी थी रही आहे। गज़ा जे अवाम खे पंहिंजे ई घर में शहीद कयो पियो वञे। मालदीव जे स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारां GHQ जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। ISPR मौजूदु मुलाक़ात दौरान

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि

0: सी घरन जू पकियूं छितू लगरा लाए खुश खबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जू छितू पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
0: जी हा 2320786
2: GAFM रेडियो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान FM 88 आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी
0: आवाज,
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरियल दिलनि में आ बेआई, चाहत जा चंग वॼायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आ। कराची खां कश्मीर किंजर खां कारूंझर ताईं सुहिणी सिंधवासियुनि खे आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे।

प्रोग्राम दिल जी गाल संगद आऊं आया आबिद चौहान आवां बुधी रहा हो GAFM नेटवर्क। GAFM नेटवर्क दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन प्रिय प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

वस में नाहे, वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां, रात नाहे जो मां गुज़ारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां, रात नाहे जो मां गुज़ारे छॾियां। दर्द आहिनि त दिल दुखाइनि था, दर्द आहिनि त दिल दुखाइनि था, पखी हुजनि त मां उॾारे छॾियां। वस में नाहे जो मां विसारे छॾियां। अॼु इन चौसठे सां शुरूआत कईसीं असांजे हिक पहिरीं प्यारे दिलरुबा दिलबर दोस्त महबूब साईं जो फरमान हुयो। उहो फरमान अखियुनि ते हुकुम जी तामील कंदे असां साईं शहज़ाद अहमद मलिक साहब जो इहो चौसठो चूंड प्रोग्राम में शामिल कईसीं। प्रोग्राम में बाक़ाइदगी सां ग़ज़ल ऐं गीत बि शामिल कंदासीं ऐं खोड़ सारनि ख़ूबसूरत महबूब असांजे सिंध जे नाले वारनि शायरनि जी शायरी पिणु शामिल कंदासीं।

तुंहिंजो मुर्की ॾिसण मूंखे प्यारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसण मूंखे प्यारो लॻो, केॾो दिलकश हसी ई नज़ारो लॻो। तुंहिंजो मुर्की ॾिसण मूंखे प्यारो लॻो, केॾो दिलकश हसी ई नज़ारो लॻो। तुंहिंजे मुर्कण सां ख़ुशबू थी वई आहे फिज़ा, तुंहिंजे मुर्कण सां ख़ुशबू थी वई आहे फिज़ा, ख़ुशबू ख़ुशबू अजग मूंखे सारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसण मूंखे प्यारो लॻो। तुंहिंजे कन में थो पियो टिमटिमाए ईअं, तुंहिंजे कन में थो पियो टिमटिमाए ईअं, वालो आकाश जो कोई तारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसण मूंखे प्यारो लॻो, केॾो दिलकश हसी ई नज़ारो लॻो।

सभ जे साम्हूं सॼाईं ऐं आबिद चई, सभ जे साम्हूं सॼाईं ऐं आबिद चई, मुंहिंजो दिलबर मूंखे दिलवारो लॻो, तुंहिंजो मुर्की ॾिसणु मूंखे प्यारो लॻो, कहिड़ो दिलकश हसीं ही नज़ारो लॻो।

ऐं इहे सिटूं मूं नाचीस अब चौहान जूं हुयूं। असां इहे सिटूं मूं नाचीस अब चौहान जूं हुयूं। असां इन सां गॾु हिकड़ो ख़ूबसूरत ट्रैक शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अचो त गॾिजी हीउ ख़ूबसूरत ट्रैक एंजॉय कयूं।

प्रोग्राम दिल जी गाल से गड़ा हुआ है अब चौहान आया बुधी रहा हूँ जी एफ एम नेटवर्क वक्त थे है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक का वापस वरी वेहंदे बुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: खुशखबरी, खुशखबरी। अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन,
5: یعنی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
8: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
9: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
8: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
9: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائی بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
9: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331-2525-786
9: جی ہاں بڑی 331-2525-786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
9: سندھ جو آواز

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।